FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जून सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 और 38 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना

0: भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत हैं विचार बिंदु। आज का विषय है अतिथि।
3: स्वामी विवेकानंद ने कई कहानियां और कथाएं मानवता के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान के लिए कही। उनमें अतिथि नामक मनोरम कहानी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की सूक्ति पर आधारित है। एक गांव में हरिदास नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधु के साथ रहता था। वे इतने अधिक निर्धन थे कि अक्सर उन्हें भोजन भी नहीं मिलता था। हरिदास महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ा करता था, जिन्हें वह ग्रामवासियों को सुनाया करता था, जिससे वे भी परोपकार और दया का पाठ सीख सकें। ग्रामवासी उसे भेंट में आटा, चावल, साग, फल आदि दिया करते थे। वह उन्हें घर जाकर सावधानी से 4 बराबर भागों में बांटता, ताकि परिवार के 4 सदस्यों को समान हिस्सा मिल सके। कुछ समय बाद

0: गांव में ऐसी स्थिति आई कि ग्रामवासियों के पास अपने लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं रहता था। वर्षा न होने के कारण खेतों की सारी फसल सूख कर नष्ट हो गई थी। लोग भूख प्यास से व्याकुल रहने लगे। हरिदास और उसके परिवार के सदस्य भी अत्यधिक दुर्बल होने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एक बार कुछ यात्री उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने जब गांव की दुर्दशा देखी तो गांव वालों को आटे का एक बड़ा बोरा दिया, परंतु गांव वाले अपने गुरु और मित्र हरिदास को भूले नहीं। उन्होंने उसे भी थोड़ा आटा भिजवाया। हरिदास की पत्नी ने आटे को देखा और कहा, यह तो चार व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं है, मैं आप तीनों के लिए रोटी बना दूंगी। नहीं नहीं, हरिदास ने कहा, हम सभी तो भूखे हैं, तुम चारों के लिए छोटी छोटी चार रोटियां बना लो। हरिदास की पत्नी और उसकी पुत्र वधु ने चार समान रोटियां बनाई तथा पुकार कर हरिदास को कहा, आओ जल्दी खा लें, क्योंकि हम सब बहुत भूखे हैं। उसने सबको एक एक रोटी दी और एक अपने लिए रख ली। ठीक उसी समय बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। भला इस समय कौन आया है? ऐसा सोचकर हरिदास ने अपनी रोटी रखी और उठकर दरवाजा खोलने गया। उसने कहा, उसने वहां फटे चिथड़े में लिपटे एक भिखारी को खड़ा देखा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हरिदास ने पूछा। आगंतुक व्यक्ति ने कहा, मैं वाराणसी जा रहा हूं, मैं भूखा और थका हुआ हूं। महाशय, क्या मैं यहां कुछ देर के लिए विश्राम कर सकता हूं? हरिदास ने उस अतिथि का स्वागत किया। अतिथि की सेवा करना भगवान की ही सेवा करना है। हरिदास कहने लगा, हमारे पास अधिक कुछ खाने को नहीं है, पर आज ही कुछ आटा मिला जिससे हमने चार रोटियां बनाई हैं, एक मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। ऐसा कहकर हरिदास ने उसे अपनी रोटी दे दी। खाकर उसने कहा, आहा कितनी अच्छी थी रोटी, बहुत भूख लग रही है, मेरा पेट जला जा रहा है, कहीं मेरे प्राण ही न निकल जाएं। हरिदास की पत्नी ने देखा और अपनी रोटी उसे दे दी। हरिदास के प्रतिकार करने पर उसने विनम्रता से कहा, हम गृहस्थ हैं और हमारे घर एक भूखा अतिथि आया है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसे खाना दें। आपने अपनी रोटी दे दी और अब आपकी पत्नी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी रोटी भी उसे दे दूं। वह रोटी भी आगंतुक शीघ्र ही खा गया। हरिदास की पत्नी ने पूछा, अब कुछ ठीक लगा? अभी भी भूख बहुत लगी है, आगंतुक ने कहा। हरिदास के पुत्र ने कहा, पिता के कार्य को पूरा करना पुत्र का धर्म है, अतः मेरी यह रोटी तुम ले लो। ऐसा कहकर हरिदास के बेटे ने अपनी रोटी उसे दे दी। उसे भी खाकर जब वह तृप्त नहीं हुआ, तब पुत्र वधु ने भी अपनी रोटी उसे दे दी और तब कहीं जाकर उसे शांति मिली। उसने कहा, अब मैं ठीक हूं, अब मुझे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए। खड़े होकर उसने उन लोगों को आशीर्वाद दिया और पुनः यात्रा पर चल पड़ा। उसी रात भूख से हरिदास, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधु की मृत्यु हो गई। भारतीय ज्ञान गरिमा के गौरव स्वामी विवेकानंद इस कहानी के माध्यम से जनमानस को हमारी गरिमामय संस्कृति में त्याग और सेवा के सर्वोच्च राष्ट्रीय आदर्श का स्मरण कराते हैं।
1: विचार बिंदु में ये थे आज के विचार, और आइए अब मिलकर आरंभ करते हैं आज की आराधना।

शब्द जब प्रेम में डूब कर निकले, भाव जब समर्पण की मूरत बने, तो ईश्वर के चरणों में स्वयं पहुंच जाए, हर वाणी हर विचार एक अर्पण बने।

विनोद पटेल और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब प्रस्तुत है अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन। राम नाम के दो अक्षर में सारी सृष्टि समाई, कृष्ण नाम के सुमिरन से मन पावन हो जाए।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के स्वर में पंडित किरण मिश्रा का लिखा ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। अब प्रस्तुत है सुरेश वाडकर के स्वर में ये भक्ति रचना। तनु पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज की बात।

आज की बात सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज तारीख है 10 जून और आइए अब जानते हैं आज का दिन इतिहास में क्यों है खास। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1906 को केरल में जन्म हुआ था भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक दामोदर मेनन का। वे एक जाने माने पत्रकार थे। तत्कालीन समय में उनकी गिनती देश के बेहतरीन पत्रकारों में की जाती थी। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। समाजवादी विचारों के होते हुए भी दामोदर मेनन गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न समयों में समदर्शी, स्वतंत्र, कहालम और पावर शक्ति पत्रों का संपादन भी किया। प्रथम कोटि के पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी दामोदर मेनन 1 नवंबर 1980 को इस संसार से विदा हुए। आज उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम को पहली बार लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई थी। कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने 10 जून 1986 को इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर इतिहास रचा था।

वर्ष 1940 में आज ही के दिन 2 महीने के युद्ध के बाद नॉर्वे ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। आज ही के दिन वर्ष 1955 में जन्म हुआ था पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का। बेंगलोर कर्नाटका में जन्मे प्रकाश पादुकोण को वर्ष 1980 में वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी का दर्जा दिया गया था। उसी वर्ष प्रकाश पादुकोण ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें वर्ष 1972 में अर्जुन पुरस्कार और 1982 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण उनकी बेटी हैं। आज प्रकाश पादुकोण का जन्मदिन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को हम उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं।

दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1973 को मुंबई में जन्म हुआ था हिंदी सिनेमा जगत के एक जाने माने गायक और संगीत निर्देशक रूप कुमार राठौड़ का। जाने माने ध्रुपद गायक पंडित चतुर्भुज राठौड़ के घर जन्मे रूप कुमार राठौड़ को संगीत विरासत में मिला था। मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण और गायक विनोद राठौड़ उनके भाई हैं। फिल्मों में पार्श्व गायन की शुरुआत उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म गुमराह के साथ की। अभिनेता संजय दत्त पर फिल्माया गया वो गीत था मैं तेरा आशिक हूँ। इसके बाद उन्होंने राजा भैरवी, प्रेम ग्रंथ, बॉर्डर, विनाशक, लावारिस, सरफरोश, मेला, गजगामिनी, फिलहाल, गुनाह, वीरजारा, अनवर, रब ने बना दी जोड़ी, अग्निपथ और रंग रसिया जैसी कई फिल्मों के लिए गीत गाए। हिंदी के अलावा उन्होंने गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, असमिया, नेपाली, भोजपुरी और कन्नड़ फिल्मों के गीतों में भी अपनी आवाज़ दी। आज उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन वर्ष 2003 में मंगल ग्रह के लिए नासा ने रोबोटिक रोवर स्पिरिट को लॉन्च किया था। ये रोवर 2004 से 2010 तक सक्रिय रहा। इस दौरान स्पिरिट रोवर ने मंगल ग्रह की लगभग 1,28,000 से ज्यादा तस्वीरें भेजी थी। दोस्तों, आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस, जिसका उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना है। और साथ ही आज हम मना रहे हैं सभ्यताओं के मध्य संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वैश्विक शांति को बढ़ावा देने और विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करने और आपसी समझ विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से इस दिवस को दुनिया भर में मनाया जाता है। और अब इसी के साथ आज की बात को यहीं पर देते हैं विराम। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त मीनाक्षी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप समूह स्वर में देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज कार्यक्रम में बातें होंगी हमारी आँखों की, जो सिर्फ शरीर का एक अंग नहीं बल्कि हमारे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। इन्हीं आँखों से हम इस रंग बिरंगी दुनिया को देख पाते हैं, अपने प्रियजनों के चेहरे पर मुस्कान पहचान पाते हैं, सूरज की पहली किरण का स्वागत करते हैं और रात के तारों में सपने सजाते हैं। आंखें सिर्फ दृश्य नहीं दिखाती बल्कि भावनाओं को समझने और जीवन को महसूस करने की शक्ति देती हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आंखें ना हो तो हर ओर सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और अनजान दुनिया का भय ही रह जाएगा। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो देखने की क्षमता से वंचित हैं। उनके लिए ये सुंदर दुनिया केवल कल्पनाओं में बसती है, लेकिन आप और हम उनके जीवन के इस अंधकार को दूर कर सकते हैं नेत्रदान के जरिए। ये एक ऐसा दान है जो आपके जीवन के बाद भी किसी और के जीवन में उजाला भर देता है। दोस्तों, नेत्रदान के इसी महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक बच्चा जिसने कभी अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा, एक युवा जिसने कभी अपने सपनों को आंखों से साकार होते नहीं देखा। अगर आपकी आंखें उन्हें मिल जाएं तो उनके जीवन में कैसी खुशी का उजाला हो जाएगा। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, नेत्रदान जैसे महान कार्य के प्रति समाज में कई तरह की भ्रांतियां और मिथक भी हैं जो लोगों को इस पुण्य कार्य को करने से रोकती हैं। जैसे नेत्रदान करने से शरीर खराब हो जाता है, आंखें पूरी निकाल ली जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेत्रदान केवल आंख के कॉर्निया तक सीमित होता है। ये प्रक्रिया पूरी सावधानी से की जाती है जिससे शरीर के बाहरी रूप में कोई बदलाव नहीं आता। कई लोगों को लगता है कि नेत्रदान से अगले जन्म पर प्रभाव पड़ता है, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। दोस्तों, सभी धर्म सेवा और दान को सर्वोच्च मानते हैं और नेत्रदान जैसा पुण्य कार्य किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। कई लोगों को नेत्रदान कैसे किया जाता है, कौन कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं या नेत्रदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो नेत्रदान नहीं कर पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस नेत्रदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने और लोगों को नेत्रदान करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दोस्तों, जब दुनिया छोड़कर हम जाएंगे तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी आँखें दान कर जाएँ तो हमारी रोशनी हमेशा इस दुनिया में जीवित रहेगी। यही असली अमरता है, दूसरों के जीवन में उजाला बनकर जीना। रोशनी बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि दुनिया को थोड़ा और उज्जवल बनाएं, एक नेत्रदान के संकल्प के साथ। और अब इसी के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से अपनी दोस्त मीनाक्षी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे।

रामचरितमानस से अगला प्रसंग। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में और शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रातः 8:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित वी जी जोग से वॉयलिन पर बजाया राग अहीर भैरव। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर लोकसुर कार्यक्रम में और दोपहर 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम के तहत। दोपहर 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में बहनों से चर्चा का विषय होगा अपने हुनर को फिर निखारें। साथ ही बहनें सुनेंगी बच्चों में लेखन की कला विषय पर जम्मू कश्मीर में शिक्षिका श्रीमती आंचल भंडारी से सारिका साह की बातचीत।

दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा ऑनलाइन गेम्स का बढ़ता नशा। उत्तरायण कार्यक्रम में शाम 5:45 पर आज चर्चा होगी सभ्यताओं के मध्य संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर।

शाम 6:41 पर भक्ति संगीत में आज आप सुनेंगे हरिओम शरण और अनुराधा पौडवाल के गाए भक्ति गीत। ग्राम जगत कार्यक्रम में शाम 7 बजे आज बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां और उसकी वैज्ञानिक खेती विषय पर, साथ ही चर्चा होगी मिश्रित खेती के लाभ विषय पर।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे लोक गाथा भनारी नैद का पहला भाग। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्जर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार कार्यक्रम के तहत, सुबह 11 बजे सैनिकों के लिए, दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार, दोपहर 12 बजे मेरी पसंद, अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। फिल्म संगीत पुनः सुनिएगा शाम 7:40 पर, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में, और पुनः रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित होगा। सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में, दोपहर 1:15 पर और रात्रि 10 बजे। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर

भूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

श्री रामचरित मानस से 120वां प्रसंग अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों में विकसित भारत @2047 मुहिम चलाई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए

0: तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। और राजधानी देहरादून में आगामी मानसून से पहले जिले में जल भराव की समस्या तथा उसके निस्तारण को लेकर तैयारियां शुरू। प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों में विकसित भारत @2047 मुहिम चलाई जाएगी। इस अभियान के तहत सभी विश्वविद्यालयों में अलग अलग थीम पर 5 सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्रीगण, स्थानीय सांसद, विधायक व पद्म पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति प्रतिभाग करेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी खासी अहम है। उन्होंने सेमिनारों के सफल आयोजन को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉ. रावत ने कहा कि कार्यक्रम में संवाद एवं विचार विमर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विशेषज्ञ वक्ता अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय में सेल्फी प्वाइंट स्थापित किए जाने के साथ ही हाफ मैराथन, साइकिल रैली, लघु फिल्म प्रतियोगिता, सोशल मीडिया अभियान एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि CBI इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट UG पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही CBI ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। प्रदेश में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और लीक प्रूफ आयोजित कराए जाने के लिए अत्यधिक सुरक्षा एवं निगरानी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां जोरों पर हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा की तैयारियों के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों के लिए परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए शीघ्र शासनादेश जारी किए जाने को कहा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से बारिश की संभावनाओं को देखते हुए सड़कें बंद होने पर बैकअप प्लान भी तैयार रखे जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव ने 14 जून को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी आवश्यक जांचें, संदिग्धों का वेरिफिकेशन, परीक्षार्थियों की चेकिंग समेत अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। बैठक में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं आवश्यक तैयारियों के संबंध में संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की ओर से तैयार की गई मेरी योजना पुस्तक के ऑडियो क्लिप का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुस्तक में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं को एक ही स्थान पर संकलित किया गया है, जिससे आम नागरिकों को योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। पुस्तक में केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के साथ साथ स्वरोजगार, कौशल विकास, शिक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया को सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस मौके पर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने बताया कि पुस्तक का ऑडियो संस्करण आकाशवाणी सहित अन्य रेडियो स्टेशन पर प्रसारित किया जाएगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। राजधानी देहरादून में आगामी बरसात और मानसून सीजन के दौरान जिले में जल भराव की समस्या तथा उसके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस

संबंध में कल जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मानसून के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए जलभराव की समस्या का शॉर्ट टर्म निस्तारण के साथ स्थायी समाधान के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा। बैठक में अवगत कराया गया कि जिले के देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी एवं विकासनगर क्षेत्रों में कुल 61 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां मानसून के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। इनमें रिस्पना क्षेत्र, आईटी पार्क, आईएसबीटी सहित अन्य संवेदनशील स्थान शामिल हैं। उन्होंने संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी तथा संभावित जोखिम वाले क्षेत्र

0: जिले के देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी एवं विकासनगर क्षेत्रों में कुल 61 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां मानसून के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। इनमें रिस्पना क्षेत्र, आईटी पार्क, आईएसबीटी सहित अन्य संवेदनशील स्थान शामिल हैं। उन्होंने संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी तथा संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में पूर्व तैयारी सुनिश्चित कर जनधन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी राम जी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। श्री कैची धाम क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या से राहत दिलाने के उद्देश्य से निर्माणाधीन भवाली सैनिटोरियम रतिघाट बाईपास मार्ग का कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को मार्ग पर समतलीकरण संकेतक पट्टिकाओं की स्थापना तथा सुरक्षा मानकों को संबंधित शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि मार्ग पर सड़क कटान का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा रतिघाट में अल्मोरा राष्ट्रीय राजमार्ग को बाईपास से जोड़ने वाले वैली ब्रिज का निर्माण भी अंतिम चरण में है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोहर सिंह धर्मसक्तू ने बताया कि पुल का कार्य 3 दिन के लिए भीतर पूरा कर आवश्यक परीक्षण के बाद मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, इस शीर्षक से प्रकाशित समाचार में दैनिक जागरण समाचार पत्र लिखता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन एवं पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों की खबर पर अमर उजाला लिखता है, 30 जून तक हो सकेंगे तबादले, अंतिम तिथि 10 जून से बढ़ाकर कर दी गई 30 जून। उत्तराखंड में पीएम श्री विद्यालयों के लिए नई पाठ्य चर्चा पर मंथन, इस शीर्षक से प्रकाशित खबर पर अमर उजाला लिखता है, SCERT में सामाजिक भावनात्मक अधिगम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला। नीट में शामिल होने वाले छात्रों को मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा, हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, आगामी 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परिवहन विभाग की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए जल्द शासनादेश जारी होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों में विकसित भारत @2047 मुहिम चलाई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। और राजधानी देहरादून में आगामी मानसून से पहले जिले में जल भराव की समस्या तथा उसके निस्तारण को लेकर तैयारियां शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं दीवान सिंह धनिक के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया

0: और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं,
1: विश्वास जगाएं।
2: जागो ग्राहक जागो।
3: श्रोताओं, लोकमंजरी कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं दीवान सिंह धनिक के गाए लोकगीत।

श्रोताओं, दीवान सिंह धनिक का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं रमेश चंद्र मिश्रा का गाया ये लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी।

रमेश चंद्र मिश्रा के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

0: एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में

0: कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
5: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम साइरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi

0: पंडित वी जी जोग से वॉयलिन पर बजाया राग अहीर भैरव अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रधानमंत्री की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मीना, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जो होर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। पुरुष क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के ठीक 9:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

गीत निर्झर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। ऐसी ही मधुर आवाज़ है रूप कुमार राठौर की। दोस्तों, आज रूप कुमार राठौर का जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1973 को मुंबई में जन्मे रूप कुमार राठौर का परिवार संगीत से गहराई से जुड़ा है। उनके पिता चतुर्भुज राठौर, उनके भाई श्रवण और विनोद राठौर संगीत जगत के जाने माने नाम हैं। रूप कुमार राठौर ने अपने करियर की शुरुआत गज़लों और लाइव कॉन्सर्ट के साथ की थी और धीरे धीरे बॉलीवुड से जुड़े और अपनी एक अलग पहचान बनाई। हिंदी के अलावा उन्होंने अन्य भाषाओं में भी कई गीत गाए हैं। एक गायक और संगीतकार के तौर पर उन्होंने ऐसे गीत दिए हैं जिनकी नरमी, गहराई और सूफियाना एहसास सीधे दिल को छूता है। आज उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं हम उन्हें अपने कार्यक्रम के माध्यम से प्रेषित करते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा आपने सुना रुकमार राठौर की आवाज़ में अनवर फिल्म से। नगमा निगार थे सईद कादरी। इस नगमे को सुनना चाहा था टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा ने। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी और शबनम बानो ने। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज ने इसी गीत की फरमाइश की थी। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कर, अनिल जैन और दर्शन भाई ने। इसी गीत को सुनना चाहा था जवाहर नगर दुर्ग से हमारे श्रोता आर सी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, दो रास्ते फिल्म से। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा ने। चंद्रनगर सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी। अम्बाला से हैं आशु खान और सोनाली खान। इंदिरा चौक दिल्ली से हैं अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। बदलापुर मुंबई से हैं विनोद बंडलकर। इसी गीत को सुनना चाहा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हुदा। मित्रनगर बीच शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोडे, रेखा बंसोडे, अदिति बंसोडे और वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडाला से हमारे श्रोता हैं आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। जिला खरगोन सनावद एमपी से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं माचिस फिल्म से। आवाजें हैं ए हरिहरन और सुरेश वाडकर की। गुलजार के लिखे गीत को संगीत से सजाया है विशाल ने। इस गीत को पसंद किया है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया। मालियान सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिबियम जैन। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। इसी गीत को सुनना चाहा है देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली छत्री ने। इसी गीत की फरमाइश की है गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी ने। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर माचिस फिल्म का ये गीत।

0: with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में आरजू फिल्म से। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। निम्न

और रुद्र वर्मा। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है मोर टक्का माफी खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल ने। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर। परभणी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रतीश और समस्त संघई परिवार। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके और हनुमान बोटके। अंबेडकर चौक वाकोडी से हैं उत्तम जमदाडे और स्वराज जमदाडे। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान तापड़े, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर गैम्बलर फिल्म का ये गीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अपनी पसंद के फिल्मी नगमे इस समय आप गीत निर्झर प्रोग्राम के तहत आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत है गैम्बलर फिल्म से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत है नीरज का और संगीत दिया है एसडी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश की है नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु ने। दतरंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा।

0: करनी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में बाजीगर फिल्म का गीत। गीतकार हैं नवाब आरजू और संगीतकार हैं अनु मलिक। इस गीत को सुनना चाहा है सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द कवर्धा छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज और सूरज राजपूत ने। कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सरवत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख। खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्म मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का। इसी गीत को सुनना चाहा है कड़वासरा, माफ़ कीजिएगा, हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश कड़वासरा, युद्धव कड़वासरा और हनुमान सहारण ने। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूली बाठे। नई बस्ती गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी।

दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी गीतों को इस कार्यक्रम में सुनने के लिए आप हमें हमारे फ़ोन नंबर 9411001122 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।

0: साथ ही हमारी मेल आईडी geetnirjhar.almora.air@gmail.com पर भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं।
1: Make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
2: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
0: रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गीत। गीत है जयदीप साहनी का और संगीत है सलीम सुलेमान का। इस गीत को सुनना चाहा है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन ने। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। नाभा पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। इसी गीत को सुनना चाहा है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे ने। नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से हैं मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया साहिन नाज और नाजिया नूरी नाज। इस गीत को सुनना चाहा है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह और सुनीता सिंह ने। लिवाई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। इस गीत की फरमाइश की है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। मारहरा गेट एटा से है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ और रसीद वारसी। तो लीजिए पेश है आपकी पसंद आपकी नजर।

श्रोताओं, आइए अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर के गाए जिंदगी और ख्वाब फिल्म के नगमे के साथ। नगमा निगार हैं प्रदीप और इस नगमे को सुनना चाहा है पटेल नगर मालौट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, आरजू और गुड्डू ने। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हैं पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्राविया रामटेके। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। चंडीगढ़ से हैं शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। खुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवाशहर पंजाब से हैं सुरेंदर संधू, अनिता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रतीक्षा संधू और मैक्स। खमरिया छत्तीसगढ़ से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। इसी गीत को सुनना चाहा है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गौंडा ने, अर्चना और प्रणय प्रसिद्धि ने। बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से हैं रणजीत कारेगांवकर, कंचन, सृष्टि और समरजीत कारेगांवकर। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और गौरी सुरलकर। लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल ने। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर आज के प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म के इस नगमे के साथ आज का गीत नशर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त मीनाक्षी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

गीत निर्झर, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास पर आधारित एक नई पहचान दी है। एक दैनिक समाचार पत्र में लेख में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास, सुरक्षा,

0: आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मीनाब, बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की पहली पेशकश गुलाम अली की आवाज में।

0: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
4: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
3: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6-year bags.
4: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
3: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: Nexa. श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की अगली पेशकश पंकज उधास की आवाज़ में।

0: summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to Rs. 25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC applies.
2: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
0: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC applies.

सोनू निगम के गाए इसी गीत के साथ आज का सब रंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब तक 4399 दिन का हो गया है। इस अवसर पर विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हरिद्वार जिले की तहसील लक्सर क्षेत्रांतर्गत प्रशासन एवं पुलिस बल के साथ गोवर्धनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इस मौके पर 35 से अधिक अवैध अतिक्रमणों को हटाने के साथ 13 लोगों का चालान किया गया। इस संबंध में जिला प्रशासन एवं नगर पंचायत की ओर से सभी संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में अवैध कब्जा न करने की हिदायत दी गई। प्रशासन ने संवेदनशील स्थलों की नियमित निगरानी तथा संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में पूर्व तैयारी सुनिश्चित कर जनधन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया। आगामी 15 जून को नैनीताल जिले में स्थित बाबा नीम करोरी महाराज के सुप्रसिद्ध कैंची धाम की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले वार्षिक कैंची धाम मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेले को सुरक्षित व्यवस्थित एवं श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य से यातायात प्रबंधन, पार्किंग, शटल सेवा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैना गांव स्थित एक भोजनालय में राज्य कर विभाग की जांच के दौरान 50 लाख रुपए से अधिक कर चोरी का मामला सामने आया है। सहायक राज्य कर आयुक्त प्रकाश चंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में हुई जांच में फर्म स्वामी चंदन सिंह केड़ा के ढाबे का वार्षिक कारोबार जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्य सीमा से काफी अधिक पाया गया। विभाग ने फर्म स्वामी को 12 जून तक जीएसटी पंजीकरण कराने के निर्देश दिए, वरना नियमानुसार कर एवं जुर्माना वसूली की कार्रवाई करने को कहा गया। विभाग के अनुसार प्रदेश में 20 लाख से रुपए से अधिक वार्षिक व्यापार होने पर जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पौड़ी गढ़वाल जिले में

0: स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी चिकित्सालयों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विकासखंड कोट स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर जामला खाल में भी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच शिविर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव मोहन शुक्ला ने बताया कि अभियान में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सुलभ एवं सुरक्षित मातृ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में इस अभियान के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय की रहते पहचान एवं उपचार, निःशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधाओं का विस्तार, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा व रेफरल सेवाओं को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल जिले के सकन्याणा मल्ला मोटर मार्ग के लगभग 1.7 किलोमीटर डांबरीकरण कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 1.62 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

सुरबहार कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सेगमेंट है शीर्षक गीत, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं लम्हा शीर्षक पर कुछ फिल्मी गीत। लम्हा एक छोटा सा शब्द, लेकिन अपने भीतर पूरी एक दुनिया समेटे हुए। कभी ये मुस्कान बनकर होंठों पर ठहर जाता है, तो कभी आँखों की नमी बनकर दिल को छू जाता है।

दोस्तों, हम पूरी ज़िंदगी बड़े पलों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी तो छोटे छोटे लम्हों में छिपी होती है। लम्हा रुकता नहीं है, वो चलता रहता है समय के साथ साथ, लेकिन अगर हम चाहें तो उसे महसूस करके अपनी यादों में हमेशा के लिए सजा सकते हैं।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
3: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
4: दोस्तों, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। और कार्यक्रम में शीर्षक गीत के तहत आज का शीर्षक है लम्हा, वक्त की हथेली पर ठहरा हुआ एहसास।

0: पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
3: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
4: दोस्तों, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें हम जी लेते हैं, पर उस वक्त समझ नहीं पाते कि ये लम्हे कितने कीमती हैं। और जब समझ आता है तो वो लम्हे हमारे पास नहीं होते, बस यादों में रह जाते हैं। बाद में मन में बस कसक रह जाती है, क्योंकि बीते लम्हे कभी वापस नहीं आते। इसलिए बीते लम्हों को सहेज कर रखें।
5: अलविदा मत कहो।

इसी गीत के साथ आज का सुरभार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज शीर्षक गीत के तहत लम्हा शीर्षक पर आपने गीत सुने। फिल्में थीं द ट्रेन, रिवॉल्वर रानी, जोधा अकबर और निकाह। और अब अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त मीनाक्षी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

सुरबहार, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत सैनिकों के लिए।

0: सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म फूल बने अंगारे से। गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने।
1: Every drive feels smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
2: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
0: Nexa. आप तो ऐसे न थे। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना है निदा फाजली की और धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में दूसरा आदमी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। सैनिक भाइयों, आइए अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए काला पत्थर फिल्म के नगमे के साथ। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी।

काला पत्थर फिल्म के इसी नगमे के साथ आज का सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

अभी सैनिक भाई सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं गोकुल बिष्ट और साथियों का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
6: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.

0: exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
1: लोक सुर कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों के साथ हम श्रोताओं से जुड़े हैं। तो अब आपको सुनवाने जा रहे हैं गढ़वाली लोकगीत। कलाकार हैं संतोष कुमार खेतवाल।

कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

श्रोताओं, मेरी पसंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और कीजिए स्वीकार अंजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा की हम बात करें तो कई ऐसे पार्श्व गायक हुए हैं, कलाकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेहद संघर्ष किया और खूब मेहनत परिश्रम का परिणाम ये रहा कि वो अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचे और उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। ऐसे ही एक जाने माने पार्श्व गायक हैं जिनके बारे में आज मेरी पसंद में हम आपसे बातचीत करेंगे, उनके गाए कई खूबसूरत गानों को आपको सुनवाएंगे। हालांकि एक दौर ऐसा भी रहा उनकी ज़िंदगी में जब उनकी आवाज़ के लिए खूब आलोचनाएं भी हुईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी आवाज़ का जादू उन्होंने कई तरह से बिखेरा। बहरहाल उनके गाने जो हैं, आज कोई भी पार्टी होती है तो उनके गाने अधूरे हैं उस आवाज़ के बिना। शायद आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मीका सिंह की। आज 10 जून मीका सिंह का जन्मदिन है, तो इस जाने माने मशहूर पार्श्व गायक मीका सिंह को सबसे पहले हम उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज का मेरी पसंद उन्हीं की आवाज़ से सजे गानों के साथ हम लेकर आए हैं, तो आइए सुनते हैं।

तो श्रोताओं, 10 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जन्म हुआ मीका सिंह का। मीका सिंह का वास्तविक नाम जो है अमरीक सिंह है, और बाद में वो मीका के नाम से मशहूर हुए। 6 भाइयों में मीका सबसे छोटे हैं, और उनके सबसे बड़े भाई, वो भी जाने माने गायक हैं, दलेर मेहंदी। उनके पिता अजमेर सिंह चंदन एक शौकिया पहलवान होने के साथ साथ प्रशिक्षित भारतीय शास्त्रीय संगीतकार भी रहे, और उनकी माता बलबीर कौर को लोक संगीत में गहरी रुचि थी, और वो राज्य स्तर पर शौकिया वो भी पहलवानी कर चुकी हैं। मीका ने 8 साल के जब हुए थे तभी उन्होंने तबला बजाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र तक उन्होंने हारमोनियम बजाना सीखा, और 14 साल की आयु में जब वो पहुँचे तो वो गिटार बजाने में निपुण हो गए। अपने शुरुआती दिनों में मीका कीर्तन गाया करते थे, बाद में वो पॉप और भांगड़ा के जाने माने कलाकार बन गए। और हाँ, क्योंकि उनके माता पिता संगीत के क्षेत्र से ही जुड़े थे, तो बचपन से ही संगीत की बुलंदियाँ कह लीजिए, बारीकियाँ जो है उन्होंने वहीं से सीखी, और बुलंदियों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उनके घर से ही निकला।

तो श्रोताओं, मीका सिंह के गाने आप जब भी सुनते होंगे तो आपको ज़रूर यूं लगता होगा जैसे पैर थिरक रहे हैं, हम झूम रहे हैं, क्योंकि झूमते गाते जो उनके गाने हैं वो मशहूर हुए हैं। बहरहाल, उनके शुरुआती दौर की बात करें तो मीका सिंह ने अपना पहला एल्बम सावन में लग गई आग, जो कि साल 1984

1998 में रिलीज हुआ था और ये एल्बम बेहद चर्चित रहा, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। इसके बाद उन्होंने साल 2000 में इश्क ब्रांडी, 2001 में गबरू जान कुर्बान और समथिंग समथिंग 2006 में ये उनके एल्बम रिलीज़ हुए और इनके ज़रिए वो बेहद लोकप्रिय हुए। साल 2006 में आई फिल्म प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स, इस फिल्म से उन्होंने आगाज़ किया और इसके बाद इसी साल अपना सपना मनी मनी के लिए जो गाना उन्होंने गाया, उस गाने को सुनकर सभी दर्शकों के दिलों में गिटार बज उठे।

इसके बाद श्रोताओं, साल 2007 आया और इस साल दुनाली नाम से उनका एक और एल्बम बाजार में आया और ये एल्बम भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। और 2007 में मीका के कुछ गाने बेहद लोकप्रिय हुए, शूट आउट एट लोखंडवाला से गणपत, जब वी मेट का मौजा ही मौजा, नहल्ले पे दहल्ला, नीली नीली आंखों वाली, जैसे कई गाने हैं जो बेहद सुपरहिट रहे। मौजा ही मौजा, जब वी मेट का ये उनका जो गाना है, शुरुआती दौर का बेहद लोकप्रिय गाना बना और मौजा ही मौजा के साथ लोगों ने खूब मौज की।

साल 2008 आया और मीका सिंह का एक और टाइटल ट्रैक बहुत ही मशहूर हुआ, ओए लकी लकी ओए।

साल 2009 मीका सिंह के लिए एक बार फिर खूब सारी उपलब्धियों के साथ ये साल आया और उनके गीतों में फिल्म जुगाड़ के लिए तबाही तबाही, जय वीरू के लिए धुन लागी, दिल बोले हड़प्पा का टाइटल ट्रैक और ये गाने भी उस दौर में बेहद लोकप्रिय हुए।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के

0: विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, आज मीका सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज है उनका जन्मदिन और हम उनकी गाय और कई एक से बढ़कर एक फिल्मों से उनकी गाने आपको सुनवा रहे हैं। साल 2010 की ओर चलते हैं और इस साल आई फिल्म हाउसफुल, और इस फिल्म के लिए उन्होंने गाना गाया आपका क्या होगा जनाबे आली। संयोगवश ये गाना साल 1981 की फिल्म लावारिस के इसी नाम के हिट गाने का रीमेक था। बहरहाल ये गाना भी दर्शकों ने बेहद सराहा।

और अब चलते हैं श्रोताओं साल 2011 की ओर। और इस साल मीका सिंह के एक से बढ़कर एक गाने रिलीज हुए। तनु वर्स मनु के लिए जुगनी गाना हो, थैंक यू के लिए प्यार दो प्यार लो हो, प्यार का पंचनामा के लिए इश्क न करियो काके, और फालतू फिल्म के लिए आलतू जलालतू जैसे कई हिट गाने गाकर मीका सिंह एक बार फिर दर्शकों के दिलों में छा गए।

तो श्रोताओं, एक लंबी फहरिस्त है उन गानों की जो बेहद लोकप्रिय हुए, कर्णप्रिय हुए मीका सिंह के। बहरहाल आधे घंटे के हमारे इस कार्यक्रम के सफ़र में हम उनके कुछ सेलेक्टेड गाने ही आपको सुनवा पा रहे हैं। बहरहाल ये जो गाने हैं वो आपको ज़रूर पसंद भी आ रहे होंगे। उनके हिट नंबर्स में फिल्म बॉडीगार्ड के लिए देसी बीट का गाना, देसी बीट ये सॉन्ग हो, फिल्म रेडी के लिए ढिंका चिका, देसी बॉयज़ का ये गाना सुबह होने ना दे, मौसम के लिए सज धज के, धरती के लिए गद्दी, और या फिर राउडी राठौर फिल्म का गाना चिंता ता, जैसे कई गाने हैं जो हम सुनते हैं तो झूम उठते हैं।

सुधों मीका सिंह ने अभिनय भी किया है दो पंजाबी फिल्मों में। इसके अलावा वो हिंदी फिल्मों में तो एक से बढ़कर एक गाने गाते ही हैं, लेकिन पंजाबी बांग्ला भाषाओं में भी उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू चलाया है और फिल्म इंडस्ट्री में वो बेहद चर्चित कलाकारों में शुमार हैं। मीका सिंह जाने माने पार्श्व गायक है, ये हम सभी जानते हैं। वो किसी ख़ास पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनकी आवाज़ का जलवा लाखों करोड़ों दर्शकों के बीच बिखरा हुआ है। उन्होंने गाने, जैसा कि हमने कहा, एक से बढ़कर एक बेहतरीन गानों को अपनी आवाज़ से इस तरह सजाया है और उनकी आवाज़ में कुछ इस तरह का जादू है जो लोगों को झूमने पर, गाने पर मजबूर कर देती है। ये आवाज़ अपने आप में ख़ास है और बुलंदियों को उन्होंने छुआ है अपनी कड़ी मेहनत और एक लंबे संघर्ष के बाद, और अपनी मेहनत के दम पर ही वो उस मकाम तक पहुंच पाए हैं जहां पहुंचना हर कलाकार का ख्वाब होता है। हम चाहेंगे आने वाले समय में भी, भविष्य में भी, वो अपनी पार्श्व गायन के ज़रिए या फिर वो जिस काम को करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ते रहें और लोगों के दिलों में राज करते रहें। यही हम उनके लिए आज एक बार फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज मेरी पसंद का सफ़र यहीं तक अंजू पांगती के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में और आप सभी को आपकी रेडियो सखी सारिका शाह का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं बहनों? हम तो यही आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगी, खुशी से भरपूर होंगी और हमारे कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होंगी। सच में बहनों आपका यही प्यार और साथ हमारे कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाता है और आपके इसी प्यार के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। बहनों हमारा हुनर हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है जिससे रचनात्मकता, अनुशासन और धैर्य जैसे गुण विकसित होते हैं। जो व्यक्ति अपने हुनर को लगातार निखारता रहता है वो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से कर पाता है। तो बहनों आज कार्यक्रम में हम अपने हुनर को फिर निखारे विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। बहनों सबसे पहले इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ समय अपने लिए तो आप ज़रूर निकालें जिससे अपनी पसंद का काम करने के लिए समय मिल सके, क्योंकि यदि आपके पास समय की कमी है तो आप अपने हुनर को नहीं निखार पाएंगे। इसलिए बहनों काम की व्यवस्थता से कुछ खास पल अपने लिए ज़रूर निकालें। बहनों हम पसंदीदा कामों की सूची बना सकते हैं। ऐसा करने से हमको अपने हुनर को पहचानने और उस पर आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। बहनों हम अपने हुनर को निखारें और उस पर काम करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम दैनिक कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों में भी भाग ले सकें। इसके लिए हम किसी संस्था, कमेटी और स्वयं समूह से जुड़ सकती हैं। इससे हमको नई चीज़ों को जानने और सीखने में मदद मिलेगी। ऐसे ही बहनों जब हम अपनी प्रतिभा को पहचान जाते हैं, उस पर काम करने लगते हैं तो समय समय पर स्वयं को परखना भी ज़रूरी है। हो सकता है हमको उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो और कुछ नया सीखने का प्रयास भी हम कर सकते हैं। इस तरह बहनों काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, योग और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बहनों अपने हुनर को पहचानें, उसे निखारें और उस पर काम शुरू करें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी और आपकी खुशी हमेशा सदा यूं ही बनी रहेगी और मन को उड़ान मिलेगी कार्यक्रम में गीत की तरह।

0: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।
2: जागो ग्राहक जागो।
3: बहनों, बच्चे हमारे भविष्य की नींव है। बच्चों में लिखने पढ़ने की कला का विकास करना हमारा कर्तव्य है। उनमें लेखन की कला विकसित करने के लिए उन्हें चित्रों और कहानियों से जोड़ना सबसे प्रभावी है। तो बहनों, आज हम कार्यक्रम में बच्चों में लेखन की कला विषय पर श्रीमती आंचल भंडारी, जो एक शिक्षिका है जम्मू कश्मीर से, ये क्षेत्र संकलित बातचीत सुनते हैं।
4: जानते हो बेल्जियम
5: इतनी नहीं है।
3: स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में।
6: आपका बहुत बहुत धन्यवाद
3: मैम। सबसे पहले आप हमें बताएं, आपकी बेटी की किताब प्रकाशित होने का अनुभव आपके लिए कैसा रहा?
6: मेरे लिए यह अनुभव शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। एक माँ के रूप में यह बहुत गर्व भरा है, खुशी से भरा हुआ है और सेटिस्फेक्शन से मिला जुला ये एक एहसास है मेरे लिए। ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी का सपना नहीं बल्कि मेरा सपना पूरा।

0: दिया हो।
1: जैसे मैम बचपन से ही उसमें लिखने पढ़ने की रुचि थी, तो आपको कैसे दिखाई दिया एक माँ के रूप में, आपने उसकी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए?
0: उसको लिखने का शौक, पढ़ने का शौक बचपन से ही था। इनफैक्ट जब वो क्लास फर्स्ट में आई तो तब से हमने शुरू किया कि ज्यादा टीवी और सोशल मीडिया से उनको बचाने के लिए मैंने कोशिश करी कि वो किताबें पढ़े। तो पहले बच्चों की नॉर्मल किताबें, पंचतंत्र वाली स्टोरी, उससे हमने शुरुआत करी और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उन सब चीजों में बढ़ने लगा। तो हमें लगा कि अब उसका जो बुक का स्टैंडर्ड था वो भी धीरे धीरे हमने बढ़ाना शुरू करा और हमें लगा कि उसको अच्छा लग रहा है। बुक पढ़ने के साथ साथ वो स्टोरीज भी सुनती थी, अपनी खुद की स्टोरीज बना के हमें वो सुनाती थी। छोटी, जब वो क्लास सेकंड में थी तब से उसने छोटी मोटी स्टोरी लिखना शुरू कर दिया था एंड थर्ड फोर्थ तक आते आते उसने ऑलमोस्ट 20-25 पोयम लिख चुकी थी। फिर उसने सोचा कि वो किताब लिखेगी और हमने उसको पूरा सपोर्ट किया उसमें।
1: तो मैम बचपन से ही आप उसे स्टोरी पढ़ाती थी और बुक्स देती थी, तो आपको दिखाई दिया, आपको लगा कि आपकी बेटी का इंटरेस्ट ये बढ़ता जा रहा है।
0: बचपन से ही उसे कहानी सुनना और किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद था, तो खुद छोटी छोटी कहानियां बना करके हमें सुनाती रहती, लिखती रहती। कहानियों के साथ साथ वो पिक्चर से भी अपने जो वो फील कर रही होती थी कहानी के साथ साथ पिक्चर्स भी वो ड्रॉ करती रहती थी, ड्रॉइंग भी करती थी साथ में कि वो क्या महसूस कर रही है। और वो जो उसकी कहानियां होती थी उससे वो ज्यादा और अट्रैक्टिव लगती थी बिकॉज वो ड्रॉ भी उतना ही अच्छा करती थी साथ में। तो उससे हमें लगता था कि भाई काफी पैसे नहीं वो एक्सप्रेसिव है, बट अपनी कहानियों, अपनी पोयम और अपनी ड्रॉइंग के थ्रू हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि वो काफी एक्सप्रेसिव है। यही धीरे धीरे उसकी लिखने की आदत, जो कहानियां वो सुनती थी पढ़ती थी वो फिर उसकी लिखने की आदत धीरे धीरे उसकी बन गई।
1: कहते हैं ना बच्चों का इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है।
0: जी वो तो है इमेजिनेशन, इसीलिए मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं उसको कॉमिक्स ना, क्योंकि कॉमिक्स में मुझे ऐसा लगता था कि ऑलरेडी पिक्चर्स बनी हुई हैं, बच्चों की कोई इमेजिनेशन उसमें काम नहीं करेगी बिकॉज सब कुछ पहले से ही है। तो हमने हमेशा ट्राई किया कि हम उसको नॉर्मल किताबें दें। शुरुआती तौर पे हमने उसको सिंपल किताबें दी, ईजी जो हो उसके रीड करने के लिए, और धीरे धीरे टाइम के साथ में फिर उसने अपनी चॉइस से अपनी पसंद की किताबें, हमारा पहले मेन फोकस था कि स्टार्टिंग में हम उसको सिंपल सी किताबें दें, फिर धीरे धीरे हमने शुरू किया कि उसने माइथोलॉजी पढ़ने में हमें लगा कि उसको इंटरेस्ट है, तो हमने बच्चों की रामायण, महाभारत, गीता वो हमने उसको जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली होती है वो दी, तो हमें रियलाइज हुआ कि उसको माइथोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है। तो ऐसे करके हमने धीरे धीरे शुरुआत करी।
1: और मैम लेखन के दौरान जब उसे कठिनाई होती तो आपने उसे कैसे समझाया और उसे आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया?
0: ऐसा कई बार होता था, आजकल वैसे भी डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं लाइफ में, बट जब भी उसको मुश्किल होता था तो मैं या फिर उसके पापा, हम उसको बोलते थे आप और बुक्स पढ़ो, आप जितनी बुक्स पढ़ोगे आप उतने क्रिएटिव होगे, उतनी आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी। कभी कभी जब वो उसे लगता था कि नेक्स्ट मैं क्या करूं, तो हम उसे हमेशा यही सजेस्ट करते थे कि आप एक बार ना लाइब्रेरी में होकर के आओ, और लाइब्रेरी जाओ और लाइब्रेरी के पापा उसको शाम को लाइब्रेरी लेके जाते थे और वहां बैठ करके वो किताबें, उसको मतलब वो जगह इतनी मैजिकल लगती थी कि वहां जाकर के उसको बहुत अच्छा फील होता था। तो जब भी वो थोड़ा सा सैड होती थी कि मैं लिख रही हूँ अब समझ नहीं आ रहा है, तो फिर जाएगी पढ़ेगी और या फिर खेलने के लिए चली जाएगी। वहां खेलते खेलते ही कई बार ऐसा होता था कि उसको आइडियाज आते थे, और खेलते जब वो खेलने जाती थी तो हमेशा उसके पास एक बुक, एक कॉपी और पेंसिल हमेशा रहती थी। कई बार ऐसा मैंने देखा था कि ग्राउंड में भी जब वो खेल रही है, खेलते खेलते सडनली उसको कोई आइडिया आएगा एंड शी विल स्टार्ट राइटिंग अपनी बुक में, उसको वो कॉपी में उसको लिखना शुरू कर देगी कि फिर ये आइडिया मिस ना हो जाए। तो अभी भी उसकी यही आदत है कि उसके पास एक कॉपी और पेंसिल हमेशा रहे, चाहे हम कहीं बाहर शॉपिंग जा रहे हो या फिर हम कहीं घूमने जा रहे हो, तो वो हमेशा अपने पास रखती है और उसी से जब भी उसको कोई आइडिया आता है या फिर कभी वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या करूं, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं अभी आइडिया नहीं आ रहा है, मे बी थोड़ा बाहर जाओ, स्काई देखो, मे बी ट्रीज देखो, बर्ड्स देखो, तो धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा और आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज आएंगे। तो ये वाली चीजें बहुत उसको हेल्पफुल लगी।
1: तो बहुत अच्छी बात बताई मैम, और जो भी सुन रहे होंगे तो उनको भी लगेगा कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दें।
0: हाँ, और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जब कभी बच्चा कुछ बोल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए। आजकल सारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बिजी हैं, बट हमें उनको रोकना टोकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो उनकी इमेजिनेशन है, उनकी जो कल्पना है, उसको हमने उड़ान देनी चाहिए।
1: क्या कभी ऐसा समय जब आप कभी थकी हो और लेकिन आपकी बेटी को आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप उसके साथ हमेशा कैसे रहें?
0: हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि मैं वर्किंग हूँ, मैं लेट आ रही हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, तो कई बार मैं और मेरे

0: हस्बैंड इस बीच में वो कर लेते थे कि अच्छा अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप देख लो, और हमने हमेशा ट्राई किया कि बच्चे को भी हम समझाएं, पेरेंट्स भी थक जाते हैं, जब बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो हम कितने भी थके हुए होते थे तो हम उसकी बात सुन लिया करते थे। धीरे धीरे वो भी समझने लगी थी कि कौन सा सही टाइम है, मैं कब पूछूं, कब अच्छा रहेगा, बिना हिचकिचाए हुए जब उसका मन करे तब वो हमसे चीजें। कई बार तो ऐसा भी होता था कि रात में हम सो रहे हैं, वो हमारे पास आएगी कि मम्मा मुझे एक आइडिया आया है, तो ये कैसा आइडिया है। तो वी ऑलवेज यूज टू सपोर्ट हर, कि जब भी उसने हमें कुछ बोला हो हमने हमेशा कोशिश करी है कि हम उसको हर उसमें सपोर्ट करें।
1: मैम, क्या परिवार के अन्य सदस्यों ने आपको और आपकी बेटी को कितना सहयोग दिया है?
0: सभी का बहुत ही सहयोग रहा है। जैसे कि नानी है, जब भी वो अपनी नानी या अपनी दादी से मिलती थी तो वो हमेशा उनसे पूछती थी कि मुझे आप स्टोरी सुनाओ। इनफैक्ट मुझे याद है कि उसने मेरी नानी से बोला कि आप अपने टाइम की स्टोरीज बताओ, आप अपने टाइम में क्या गेम खेलते थे, आप अपने टाइम में कैसे टाइम पास करते थे, क्योंकि तब तो टीवी फोन कुछ नहीं होता था, तो नानी आप, बड़ी नानी आप मुझे बताओ आप क्या करते थे। हमेशा जब वो ऐसे बड़े लोगों से मिलती थी तो उनसे वो उनकी स्टोरी जानना चाहती थी। मैं हर एक ने सपोर्ट किया कि अच्छा इसको इंटरेस्ट है, तो सब अपनी कहानियां, अपनी स्टोरी और अपने गेम बताते थे कि जब हम छोटे थे तो हम कैसे खेलते थे, हम क्या करते थे। इस जर्नी में मतलब मैं बोलूंगी मेरे परिवार के सारे ही लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया है।
1: और मैम, सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे अपनों से ही सीखते हैं।
0: बस वो ये कि आप सपोर्ट करो, उनको थोड़ा सा प्रेज कर दो, उनकी तारीफ कर दो। हम हमेशा जब भी वो कुछ लिखती थी, जब वो छोटी भी थी, सेकेंड फर्स्ट में भी थी, जब वो थोड़ा बहुत दो तीन लाइनें भी लिख के लाती थी हमारे पास में, तो हम उसे बोलते थे, हम उसे इंकरेज करते थे हमेशा कि आप बहुत ही अच्छा लिखा है, आप तो बहुत छोटे हो, आप इतनी बुक्स रीड करते हो, आप तो बहुत अच्छा लिखते हो। प्रोत्साहन जो बच्चों को मिलता है ना उससे वो बहुत अच्छा करते।
2: मैम, आपकी बेटी ने जो बुक लिखी है वो किस विषय पर लिखी है और उसकी बुक के अंतर्गत क्या दर्शाया गया है?
3: मैम, ये चार दोस्तों की कहानी है जो कि बड़े ही एडवेंचरस है, क्यूरियस है। जैसे सारे बच्चे क्यूरियस होते हैं वैसे ये चार बच्चे भी बड़े ही क्यूरियस हैं चीज़ों को जानने के लिए। तो ये अपनी इमेजिनेशन को ट्राई करते हैं कैसे रियलिटी में बदले, और उसी के थ्रू ये काफी सारे एडवेंचर्स करते हैं। तो ये उसी के बारे में ये बुक लिखी हुई है।
1: मैम, आपकी नजर में बच्चों की रचनात्मकता को निखारने में माँ की भूमिका कितनी अहम होती है?
0: माँ की भूमिका बहुत अहम होती है। माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि स्कूल जाने से पहले माँ ही होती है, वो पहला शब्द माँ से ही देते हैं। माँ बच्चे की रुचि को समझकर ही उसको डायरेक्शन देती है। माँ को सबसे पहले माँ को ही पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और वो किस फील्ड में आगे जा सकता है। कई बार बच्चे को समझ नहीं आता है कि मैंने क्या करना है, और आजकल तो पढ़ाई में भी क्लास फर्स्ट से इतने सारे ऑप्शन हैं। कई पेरेंट्स हैं जो नहीं ज्यादा सपोर्ट करते कि अरे ये तो ड्राइंग में ज्यादा है या ये खेल में ज्यादा है। तो माँ की बहुत ही अहम भूमिका होती है। अगर माँ समझ जाए कि बच्चे की रुचि इसमें है तो आजकल तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें आप अच्छा नहीं कर सकते, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या आर्ट एंड क्राफ्ट हो, आप हर किसी फील्ड में अच्छा कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि
1: हम चाहेंगे कि आप उन माओं के लिए, आपके पास क्या संदेश है जिनके बच्चे में कोई हुनर है लेकिन वो संकोच करती है उन्हें आगे बढ़ाने?
0: मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों में विश्वास रखें, उनके हुनर को पहचाने और उन्हें खुलकर आगे बढ़ने दें, संकोच छोड़कर उनका साथ दें, क्योंकि सही समय पर दिया गया प्रोत्साहन उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
1: धन्यवाद मैम, आपने जो इतनी अच्छी बातें हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं से साझा करी, हम आपकी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
4: बहनों, अभी आप कार्यक्रम में सुन रही थी बच्चों में लेखन की कला विषय पर श्रीमती आंचल भंडारी से विशेष संकलित बातचीत। बहनों, कार्यक्रम में सुनते हैं महत्वपूर्ण संदेश।
5: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
6: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
5: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
6: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
5: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
6: Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
6: With its sporty design and thrilling

0: difference. It's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to rupees 25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.
2: बहनों, महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लखपति दीदी योजना भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई, जो एक महत्वाकांक्षी महिला सशक्तिकरण की पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कौशल, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की मुख्य बातें, जिनका उद्देश्य है कि महिलाओं को ड्रोन संचालन, एलईडी बल्ब निर्माण और सिलाई जैसे उच्च मांग वाले कौशल का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाए। लखपति दीदी योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं को बाजार से जोड़ना है। देश के अनेक राज्यों में लाखों महिलाएं इस पहल से जुड़कर खेती और हस्तशिल्प क्षेत्र में सफल उद्यमी बनी हैं। सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों में महिला सशक्तिकरण को मुख्य स्थान दिया गया है। सरकार के 12 वर्षों के संदर्भ में देखा जाए तो लखपति दीदी पहल ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनकर उभरी है। महिलाएं आगे बढ़ें और अपने सपने पूरे करें। और अब सुनते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश।
3: सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: स्वागत है बहनों फिर से आप सभी का। बहनों, हमारी रसोई हमारे स्वास्थ्य का खजाना है। रसोई में उपयोग होने वाले मसाले न केवल हमारे खाने का स्वाद और सुगंध बढ़ाते हैं, बल्कि ये औषधि गुण से भरपूर होते हैं। तो बहनों, आज है बुधवार और हम आपकी प्यारी रसोई

को हमेशा सीमित मात्रा में ही संतुलित आहार के रूप में उपयोग करें ताकि इनका सही लाभ मिल सके और हम अपने साथ साथ अपने परिवार को स्वस्थ रख सके और खुश रहे कार्यक्रम में इस गीत की तरह।

मनु, धीरे धीरे कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मनु इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पन। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी रेडियो सखी सारिका शाह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz पर। दिन के 1 बजने को हैं कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज

कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में उपलब्धि प्रदर्शनी, जन कल्याण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में अधिकारियों के साथ विक्रम संचालकों के रोजगार और आजीविका से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12 जून से 14 जून तक उपलब्धि प्रदर्शनी, जन कल्याण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपलब्धि प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आम जन को सरकार की विकास यात्रा और उपलब्धियों की समग्र जानकारी प्राप्त हो सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतिकरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने 12 जून को सभी जिलों में जिला स्तरीय प्रेस वार्ताएं आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, विकास कार्यों और प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, ताकि आम जन तक सही और व्यापक जानकारी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों और क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इन कार्यक्रमों में सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध जनों और विभिन्न वर्गों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विकासखंड स्तर पर जन कल्याण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया जाए। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना, जन कल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जनहित और विकास के संकल्पों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष।
0: उत्तराखंड के आयुष और हर्बल उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। देहरादून के सेलाकुई में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में केंद्र सरकार की ओर से

0: मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से आयुष क्षेत्र के निर्यात अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि हाल के वर्षों में आयुष क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वहीं वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित वर्मा ने कहा कि सरकार व्यापार सुविधा, डिजिटल परिवर्तन और निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से आयुष क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीति में आयुष क्षेत्र को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है, जिससे व्यापार, वेलनेस और रोजगार सृजन में इसकी भूमिका मजबूत हुई है।
1: हमारे पिछले 12 साल के क्या उपलब्धियां हैं, उसका एक हम मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट इसमें जो हम मैसेज यहाँ पर देहरादून में देना चाहते थे, देहरादून उत्तराखंड हमारा एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रदेश है आयुष के एक्सपोर्ट्स के लिए, और आयुष एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इसके बारे में काफ़ी फोकस किया गया है, और रिसेंटली जितने भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें आयुष के लिए एक हमने स्पेशल प्रोविजन दिया है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों के साथ विक्रम संचालकों के रोजगार और आजीविका से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही विक्रम संचालकों के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवहन व्यवस्था को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही पुरकुल गांव में सिटी बस सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों, छात्रों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और जनहित से जुड़े विषयों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। हरिद्वार जिले में कुंभ मेला 2027 के सुरक्षित और सफल आयोजन को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, मेला प्रशासन, उत्तराखंड पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभावित आपदा जोखिमों, भीड़ प्रबंधन, निकासी योजना, सुरक्षा व्यवस्थाओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेला अधिकारी सोनिका ने कहा कि कुंभ मेला की तैयारियों में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेला प्रशासन सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है। प्रत्येक सेक्टर में आपदा प्रबंधन संसाधनों की उपलब्धता, आपातकालीन निकासी मार्गों का विकास, संवेदनशील स्थलों की पहचान, संचार तंत्र की मजबूती और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। NDMA के सलाहकार कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह ने कहा कि कुंभ मेला जैसे विशाल आयोजन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए बहुस्तरीय एवं व्यापक तैयारियां आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ को सुरक्षित और आपदा सहिष्णु आयोजन बनाने के लिए पूर्व अनुभवों और सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का लाभ लिया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला आयुष अग्रवाल ने प्रस्तावित सुरक्षा और यातायात प्रबंधन व्यवस्था का प्रस्तुतीकरण करते हुए विभिन्न संभावित आपदा परिस्थितियों से निपटने की रणनीति साझा की। पिथौरागढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली में 80 UK बटालियन NCC के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले NCC कैडेट्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बटालियन के CO कर्नल देवेश एरी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान NCC कैडेट्स को भारतीय सेना से जुड़ने की जानकारी, आपदा प्रबंधन और यातायात नियमों की जानकारी समेत विभिन्न प्रशिक्षण दिए गए।
3: इस पूरे ट्रेनिंग में हमने कैडेट्स को सबसे पहले तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के लिए ARO की टीम आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने पूरा कैडेट्स को बताया कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या एंट्रीज हैं, क्या स्कीम्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर उसके बाद हमने ट्रैफिक पुलिस से भी रिक्वेस्ट करके उनको ट्रैफिक सेंस की जानकारी दी, और उसके अलावा SDRF की टीम आई थी जिन्होंने यू आपदा मित्र स्कीम में उनको बच्चों को प्रशिक्षण दिया।
0: प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई NCC कैडेट रश्मि पांडे ने बताया कि ये प्रशिक्षण शिविर उनके लिए काफी उपयोगी रहा।
4: मैंने बहुत कुछ सीखा, सबसे पहले डिसिप्लिन सीखा, लीडरशिप क्वालिटी सीखी क्योंकि मैं एक लीडर भी हूँ, और हमने यूनिटी सीखी कैसे एक ग्रुप को, एक

0: उसको कमांड करते हैं, हर चीज सीखी मैंने यहाँ। और यहाँ पे हमने ड्रोन क्लासेस भी ली, मैं एक ड्रोन क्लास की मेंबर रही, मैंने बहुत कुछ सीखा ड्रोन क्लास में कि ड्रोन कैसे हम उसको असेंबल करते हैं, कैसे डिसेंबल करते हैं, सब चीज हमने ड्रोन में सीखा।
1: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला न्यायालय परिसर पौड़ी में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नाजिश कलीम ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद का पहला घंटा गोल्डन आवर होता है, इस दौरान घायल को त्वरित चिकित्सा सहायता मिलने पर उसके जीवन को बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में उपलब्धि प्रदर्शनी, जन कल्याण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में अधिकारियों के साथ विक्रम संचालकों के रोजगार और आजीविका से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं अमीक हनफी के कलाम के साथ, आवाजें हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: सुगम संगीत में अब पेश है कैसर उल जाफरी का नगमा, पंकज उदास के स्वर में।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: और अब प्रोग्राम के आखिर में पेश है मेहदी हसन की आवाज में ये खूबसूरत गजल।

मेरी हसन की ऐसी गजल के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमार राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों न बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
3: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
3: है। फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
3: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
3: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं की भुनी हुई

0: बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेबेना कहते हैं। फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है। इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है। इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत

की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहाँ घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे,
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
2: हाँ, अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
2: ओह।
1: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: ओह, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
2: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है,

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हां,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
3: गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो

0: दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा,
0: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना? यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
0: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटपना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
1: अच्छा।
0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है। और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह। और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की? और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो

0: तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: किसान।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं शांति शाह के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे उत्तराखंड के लोकगीत। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत

0: के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण

0: और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है अगेती मक्का की उत्पादन तकनीकी। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर

0: देवेंद्र शर्मा।
1: किसान भाइयों, मक्का विश्व की प्रमुख धान्य फसलों में से एक है। विविध जलवायु हेतु अनुकूलन क्षमता के कारण मक्का समुद्र तल से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। मक्का व्यापक रूप से उपभोग होने वाली फसल है। सामान्य मक्का के अतिरिक्त मानव भोजन के रूप में नाना प्रकार की विशिष्ट मक्का जैसे क्यूपीएम, पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न इत्यादि, इनके उपभोग प्रकार इसे हल्के नाश्ते स्नैक्स का एक स्वास्थ्यकर व पसंदीदा विकल्प बनाते हैं तथा इसके उत्पाद की कीमत भी साधारण मक्का से अधिक होती है। उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गंतव्य है, जिस कारण वर्ष भर यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है और विशेष रूप से बुना हुआ भुट्टा पर्यटकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। भुट्टे न केवल स्वादिष्ट होते हैं अपितु इनमें पोषक तत्वों की भी प्रचुरता रहती है। सैलानियों के आगमन से पर्यटक

ये साधारण मक्का से अधिक होती है। उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गंतव्य है, जिस कारण वर्ष भर यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है और विशेष रूप से भुना हुआ भुट्टा पर्यटकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। भुट्टे न केवल स्वादिष्ट होते हैं अपितु इनमें पोषक तत्वों की भी प्रचुरता रहती है। सैलानियों के आगमन से पर्यटक स्थलों व यहाँ पहुँचने वाले रास्तों में हरे भुट्टे की बहुत मांग रहती है। परिणाम स्वरूप किसानों में मक्का की खेती का प्रचलन बढ़ रहा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो मक्का उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ की एक महत्वपूर्ण फसल है तथा उत्तराखंड में इसकी खेती लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। इसकी खेती मुख्यतः असिंचित अवस्था में की जाती है। अगेती से अभिप्राय फसल के पकने से है। अगेती मक्का 85 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में फसल के पकने तक तापमान में गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा अवधि वाली किस्मों के पकने में भी कठिनाई आती है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अगेती मक्का की खेती की जाती है। मक्का की खेती मुख्यतः खरीफ जून से सितंबर के माह में की जाती है, परंतु तलहटी व मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती जायद जो कि फरवरी से मई के माह में भी की जाती है। इन क्षेत्रों में मक्का की खेती दानों हरे भुट्टे व चारे के लिए की जाती है जो कि मुख्यतः घरेलू उपभोग हेतु प्रयोग होता है, परंतु पिछले दशकों से मैदानी क्षेत्रों में मक्का आधारित उद्योगों की स्थापना से मक्का की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण मक्का के उत्पादन व उत्पादकता में लगभग दोगुनी वृद्धि की आवश्यकता है, जिसे मक्का की उन्नत किस्मों तथा उन्नत शस्य क्रिया अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मक्का की प्रजातियों के बारे में। तो मक्का में मुख्यतः दो प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जैसे नंबर एक मुक्त परागित प्रजातियां जिनमें स्थानीय किस्में तथा उन्नत संकुल व संश्लिष्ट प्रजातियां सम्मिलित हैं। उसके बाद आता है संकर हाइब्रिड प्रजातियां जिनमें एकल संकर द्विसंकर व त्रिसंकर प्रजातियां सम्मिलित हैं। संकर प्रजातियों में मुक्त प्रजातियों की तुलना में अधिक उपज के साथ साथ विभिन्न पौधगणों के लिए अधिक समानता होती है, परंतु किसानों को हर बार संकर प्रजातियों के नए बीज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें निजी बीज संस्थानों अथवा सरकारी बीज उत्पादन संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में संकर मक्का प्रजातियों का बीज उत्पादन कृषकों द्वारा स्वयं नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत मुक्त परागित प्रजातियों की उपज कम होती है, परंतु कृषक अगर थोड़ी सी सावधानी अपनाए तो इसका बीज स्वयं तैयार कर अपनी अगली फसल उगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें उन्नत प्रजातियों के लाभ के बारे में, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो निचले क्षेत्र में उन्नत किस्में उगाई जा रही हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी अधिकतर स्थानीय किस्में ही प्रचलित हैं। ये किस्में अधिक ऊंचे बीज दर से निम्न उर्वरता वाली भूमि में बिना रासायनिक खाद के प्रयोग के उगाई जा सकती हैं। इन्हें सामान्यतः बीज छिड़ककर या हल के पीछे बोया जाता है। ये सभी कारक पौधों में बांझपन बढ़ाते हैं, वो भुट्टे के आकार में भी कमी लाते हैं। स्थानीय किस्मों की न केवल उपज क्षमता कम है बल्कि इन पर कीट व बीमारियों का प्रकोप भी अधिक होता है। मैदानी क्षेत्रों जहां अतिरिक्त संकर प्रजातियां उगाई जाती हैं, इनमें भी उपज वृद्धि की संभावनाएं हैं, जिसे उपयुक्त संकर किस्म का चयन व उन्नत फसल उत्पादन पद्धतियों का पालन कर प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करें कि किसान भाई बहन उपयुक्त किस्म का चयन कैसे करें। तो हमारे संस्थान विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा सामान्य मक्का की संकर प्रजातियां जैसे कि विवेक संकर मक्का 45, 47, 53, केंद्रीय मक्का VL55, VL संकर मक्का 57 विकसित की गई हैं। ये प्रजातियां 85 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं तथा इनकी उपज 55 से 65 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा इन प्रजातियों में मक्का की प्रमुख बीमारियां जैसे टर्सिकम व मेडिस पर्ण झुलसा के प्रति सहिष्णुता पाई जाती है। इसके अलावा विवेक संकर मक्का 45 व 53 में स्ट्रे ग्रीन गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के पक जाने पर भी पौधा हरा भरा रहता है, जिससे मवेशियों के लिए भरपूर चारा उपलब्ध रहता है। तो सामान्य मक्का के अलावा हमारे संस्थान द्वारा कुछ उच्च गुणवत्ता युक्त QPM मक्का की संकर प्रजातियों का भी विकास किया गया है, जिससे भरपूर पोषण प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम बात करें उच्च गुणवत्ता युक्त मक्का तथा इसकी उन्नत प्रजातियों के बारे में, तो उच्च गुणवत्ता युक्त मक्का जिसे QPM मक्का भी कहा जाता है, ये देखने तथा स्वाद में सामान्य मक्का की तरह ही

0: होता है, लेकिन क्यूपियम में प्रोटीन की गुणवत्ता जो है वो दूध के प्रोटीन की 90% होती है। और ये परिवर्तन मक्का के दानों के भ्रूणपोष के प्रोटीन प्रोफाइल में परिवर्तन के कारण हुआ है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो सामान्य मक्का की तुलना में क्वालिटी प्रोटीन मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की मात्रा अधिक होती है, जिससे प्रोटीन का मान लगभग दोगुना हो जाता है। हमारे संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त मक्का की संकर प्रजातियां जैसे विवेक क्यूपियम 9, बीएल क्यूपियम संकर 45, 59, 61, 63 व बीएल बीटा का विकास उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किया गया है। इन प्रजातियों में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की मात्रा सामान्य मक्का से लगभग दुगनी पाई जाती है। अब अगर हम बात करें मक्का की बुआई व अन्य सस्य क्रियाओं के बारे में, तो मक्का की बुआई का उपयुक्त समय जो है वो निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जून प्रारंभ से जून मध्य तक, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मई अंत से जून के मध्य तक तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मई के दूसरे पखवाड़े में की जाती है। अगर बीज दर की बात करें तो अच्छी फसल हेतु उपयुक्त किस्मों के प्रमाणित बीज ही बोने चाहिए। बुआई कतार में करनी चाहिए और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर व कतार में पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखने से प्रति हेक्टेयर लगभग 65,000 से 70,000 पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेगा। इसके बाद आता है पौधों पर मिट्टी चढ़ाना। तो जब पौधे घुटने तक की ऊंचाई के हो जाएं तो यूरिया की एक तिहाई मात्रा डालकर पौधों में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और मिट्टी चढ़ाने के अनेक लाभ हैं। ये नत्रजन का रिसाव कम करता है, खरपतवारों को नियंत्रित करता है, पौधों को हवा के झोंकों से गिरने से रोकता है व खेत के जल निकासी में भी सहायक होता है। अब अगर बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसमें नाइट्रोजन को 3 समान चरणों में विभाजित कर आधारीय रूप के में घुटनों की ऊंचाई तक होने पर तथा टेस्लिंग की अवस्था में दिया जाना चाहिए। फॉस्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा को आधारीय मात्रा के रूप में ही दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मक्का में लगने वाले प्रमुख रोग, उनके लक्षण, पहचान और प्रबंधन। तो टर्सिकम पर्ण अंगवारी एक ऐसा रोग है जो पत्तियों में रोग के प्रारंभिक लक्षण छोटे छोटे भूरे रंग के अनियंत्रित आकार के धब्बे के रूप में परिलक्षित होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये धब्बे अनियमित आकार, अंडाकार या नाव के आकार में बढ़ते हैं व मिलकर पत्तियों के अधिकांश भाग को ढक लेते हैं। और इसकी रोकथाम हेतु रोग के प्रकट होते ही कवकनाशी मैनकोजेब, जिसे डायथिन M45 भी कहा जाता है, को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आता है धारीदार पर्ण व पर्ण भित्ति झुलसा रोग, जिसे बैंडेड लीफ एवं शीथ ब्लाइट भी कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में इस रोग के विशिष्ट लक्षण संकेंद्रित धब्बे जो रोग ग्रसित पत्तियों के बड़े भाग पौधों की एवं पर्ण में भुट्टे के छिलके में दिखते हैं। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए रोग के लक्षण प्रकट होते ही कवकनाशी एक्जोस्ट्रोविन 0.1% और नेटिवो 0.05% का छिड़काव फायदेमंद रहता है। अब हम बात करते हैं मक्का में कीट प्रबंधन। तो जो कीट है वो है फॉल आर्मी वॉर्म। और ये मक्का की इसके लक्षण की बात करें तो मक्का की पत्तियों पर सभी प्रकार के लंबे कागजी झरोखों का पाया जाना फॉल आर्मी वॉर्म का प्रारंभिक लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण प्रथम और द्वितीय अवस्था में सुंडी द्वारा पत्तियों की सतह को खुरच कर खाए जाने से उत्पन्न होता है। बड़ी सुंडी पत्तियों को गंभीर रूप से खा जाती है और इसके खाने से पत्तियों पर विषम खांचेदार एवं गोल छिद्र एक पंक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। और सुंडी जो है वो पर्ण चक्कर पर बड़ी मात्रा में हरे भूरे रंग का मल त्याग करती है। अगर हम इसकी रोकथाम की बात करें तो सूखी रेत अथवा मिट्टी का घोल बनाकर पौधों के पर्ण चक्कर में डालने से सुंडी पौधों में प्रवेश नहीं करती है और पौधे फॉल आर्मवर्म के प्रकोप से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा रासायनिक की बात करें तो इमामेक्टिन बेंजोएट 0.4 ग्राम या स्पाइनोसेट 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव बहुत ही प्रभावकारी रहता है। किसान भाइयों और बहनों, यदि आप मक्का उगाते वक्त इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही अधिक पैदावार व अधिक आय अर्जित करने में सफल रहेंगे।
1: अगेती मक्का की

उत्पादन तकनीकी इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से जानकारी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे, रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। आज रात 8 बजे लोकगाथा भनारी नैद का पहला भाग आप सुन सकेंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा नारायणी धर्म सत्तू और साथियों के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। संध्या 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा ऑनलाइन गेम्स का बढ़ता नशा, साइंस का संसार और आज का इतिहास भी युवा साथी सुनेंगे। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा सभ्यताओं के मध्य संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत सुनिएगा जिसमें आज हरिओम शरण और अनुराधा पौडवाल के गाए भक्ति वंदन श्रोताओं को हम सुनवाएंगे। संध्या 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम होगा जिसमें आज की बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां एवं उसकी वैज्ञानिक खेती विषय पर, चर्चा सुनिएगा मिश्रित खेती के लाभ विषय पर। फिल्म संगीत शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में और रात 10:30 पर भी फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे। रात 10 बजे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: at 90.
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। आज के फनकार हैं जाने माने मशहूर अभिनेता जीवन। श्रोताओं, जीवन हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता रहे हैं और उनके हम वास्तविक नाम की बात करें तो उनका पूरा नाम था ओंकार नाथ धर। फिल्मी पर्दे पर अपनी भूमिकाओं को बड़ी ही संजीदगी से वो निभाते रहे और अधिकांश फिल्मों में खलनायक की भूमिका में वो नज़र आए, लेकिन एक ऐसी भूमिका भी थी जिसे दर्शक कभी नहीं उन्हें भूल पाएंगे। वो भूमिका थी देवर्षि नारद के रूप में और लगभग 60 से भी अधिक फिल्मों में इस किरदार को उन्होंने पर्दे पर जीवंत किया था। और नारद लीला एक फिल्म भी आई थी जिसमें नारद के किरदार को उन्होंने कुछ इस तरह से

तो श्रोताओं, 24 अक्टूबर 1915 को जन्म हुआ था अभिनेता जीवन का। जैसा कि मैंने बताया, उनका मूल नाम ओंकार नाथ धर था। 60, 70 और 80 के दशक में फिल्मों में खलनायक के किरदार को उन्होंने जीवंत किया। और उनके निजी जीवन की बात करें, जब वो मात्र 3 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया और फिर बाद में उनकी माता भी चल बसी। और फिल्मों में काम करने की बात करें तो मात्र 26 रुपए लेकर मुंबई वो एक्टर बनने के लिए चले आए। और उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। और पहला जॉब मोहन सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का उन्हें काम मिला। इसी दौरान एक्टिंग में उनकी रुचि देखकर पहली बार उन्हें फिल्म फैशनेबल इंडिया में रोल मिला था। और आज हम अभिनेता जीवन को ख़ास तौर पर याद कर रहे हैं क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, तो उन्हें हम सादर नमन करते हैं। उनकी निभाई गई कई उन फिल्मों में जो उनके किरदार हैं वो आज भी याद किए जाते हैं। जीवन जी को मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर में भी आपने ख़ास तौर पर उनके खलनायक के किरदार को देखा होगा। इसके अलावा उन्होंने नागे

इन शबनम ही रांझा जॉनी मेरा नाम कानून सुरक्षा लावारिस जैसी कई फिल्मों में काम किया और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। उन्होंने फोटोग्राफी नृत्य एक्शन संगीत हर जगह अपनी किस्मत आजमाई लेकिन उन्हें जो सफलता मिली वो खलनायक के रूप में फिल्मों में ही मिली थी।

श्रुतौ मशहूर अभिनेता जीवन एक ऐसे खलनायक के तौर पर स्थापित थे जो हीरो से मार खाने में कभी भी कंजूसी नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि एक फिल्म तभी हिट होती है जब हीरो खलनायक को पीटता है। वो अपने पुत्र किरण कुमार, जो कि स्वयं एक अभिनेता है, उनको भी यही सलाह दिया करते थे। कोई पात्र तभी हीरो कहलाता है जब वो खलनायक को बराबर मारता है। इसीलिए अपने कद में छोटे हीरो से भी मार खाने में कसर मत छोड़ो। अभिनेता जीवन से कभी भी निर्माताओं को कोई शिकायत नहीं रहती थी, क्योंकि उनके परिवार के किसी सदस्य को सेट पर आना तो दूर की बात थी। फोन पर भी लंच के समय वो सिर्फ बात किया करते थे और किसी भी समय नहीं। और अभिनय की बात करें तो वो अपने अभिनय के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते थे। इसीलिए बी आर चोपड़ा और मनमोहन देसाई जैसे बड़े निर्माताओं की फिल्मों में जीवन साहब नियमित रूप से किरदार के लिए लिए जाते थे। उनके पुत्र किरण कुमार, जो कि अभिनेता हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया था कि जीवन साहब धार्मिक स्थानों पर गरीबों को खाना खिलाने और योग्य विद्यार्थियों को पढ़ाने में आर्थिक सहायता करते रहते थे। वक्त के पाबंद जीवन साहब कभी भी सेट पर देर से नहीं पहुंचते थे, यानी वो वक्त के पाबंद थे। और जब भी वो शूटिंग के लिए हाजिर होते थे तो सबसे पहले स्टेज को छूकर नमन करने के बाद ही अपना दिन वो आरंभ करते थे। अपने काम को पूजा इबादत जैसा मानने वाले अभिनेता जीवन का 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली 10 जून 1987 को। वो इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। नारद मुनि की अपनी अनेक भूमिकाओं और ना जाने कितनी सारी फिल्मों में एक से बढ़कर एक यादगार पात्रों से जीवन साहब हिंदी सिनेमा के दर्शकों के जीवन में अपना एक विशेष स्थान रखे हुए हैं और अपने किरदारों के माध्यम से आज भी वो जीवित हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन है।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार अभी आप सुन रहे थे। आज के फनकार थे जाने माने मशहूर अभिनेता जीवन। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को अंजु पांगते का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, जानी मानी मशहूर सुप्रसिद्ध कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता, यानी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जाने माने कलाकार गिरीश कर्नाड की आज पुण्यतिथि है, तो उन्हें हम नमन करते हैं और आज उन्हीं की अभिनीत कुछ फिल्मों की गाने हम आपको सुनवाएंगे और साथ ही उनके बारे में भी आपको बताते चलेंगे।

श्रोताओं, गिरीश कर्नाड जी का जन्म 19 मई 1938 को माथेरान महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि नाटकों की ओर थी और महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ और वहीं उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई की और जब वो पढ़ते थे उसी दौरान उन्होंने थिएटर की दुनिया से खुद को जोड़ा और काम करना थिएटर में शुरू कर दिया। कर्नाटक आर्ट कॉलेज से स्नातक करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। इसके बाद गिरीश कर्नाड जी भारत लौट आए और चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में 7 साल तक उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस दौरान वो चेन्नई के कई आर्ट और थिएटर क्लबों से जुड़े रहे। इसके बाद वो शिकागो चले गए जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बतौर प्रोफेसर काम किया। उसके बाद गिरीश कर्नाड भारत दोबारा वापस लौटे और अपने साहित्य के अपार ज्ञान से क्षेत्रीय भाषाओं में कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण भी किया और कई फिल्मों की पटकथा भी लिखी।

सिनेमा की दुनिया की बात करें तो गिरीश कर्नाड एक बेहद सफल पटकथा लेखक होने के साथ साथ एक बेहतरीन फिल्म निर्देशक भी रहे हैं। गिरीश कर्नाड ने 1970 में कन्नड़ फिल्म संस्कार से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसकी पटकथा उन्होंने स्वयं लिखी थी। इस फिल्म को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और इसके बाद गिरीश जी ने कई फिल्में की। उन्होंने हिंदी फिल्मों का रुख भी किया और कई हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें शुरुआती दौर की बात करें तो निशांत, मंथन, पुकार जैसी फिल्में मुख्य रूप से जानी जाती हैं।

गिरीश कर्नाड बड़े पर्दे पर तो छाए रहे, लेकिन छोटे पर्दे पर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया और कई धारावाहिक प्रस्तुत किए। सुराजनामा और मालगुडी डेज में स्वामी के पिता के रूप में भी हमने उन्हें देखा और कई धारावाहिकों में वो नज़र आए समय समय पर।

लेकिन जब छात्रवृत्ति लेकर ऑक्सफोर्ड गए तो उन्होंने नाटकों की ओर रुझान दर्शाया। उन्होंने पहला नाटक कन्नड़ में लिखा और उसके बाद उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनके नाटकों में ययाति, तुगलक, है वदन, अंजुमल्लिगे, अग्निमतुमाले, नागमंडल, अग्नि और बरखा जैसे नाटक बेहद चर्चित हैं, प्रसिद्ध हैं। गिरीश कर्नाड जी ने कन्नड़ भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। जिस समय उन्होंने कन्नड़ में लिखना आरंभ किया उस समय कन्नड़ लेखकों पर पश्चिमी साहित्यिक पुनर्जागरण का गहरा प्रभाव नजर आता था। लेखकों के बीच किसी ऐसी चीज के बारे में लिखने की होड़ थी जो स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल नई थी। इसी समय गिरीश कर्नाड जी ने ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों से तत्कालीन व्यवस्था को दर्शाने का तरीका अपनाया और वो बेहद लोकप्रिय हुए। गिरीश कर्नाड जी के नाटक ययाति, जो कि 1961 में उनका पहला नाटक आया, और 1964 में तुगलक, ऐसे ही नाटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुगलक से गिरीश कर्नाड जी को बेहद लोकप्रियता प्राप्त हुई और इस नाटक का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इनकी कृतियों में जहां भारत का पुरातन झांकता है वहीं आधुनिकता का भी सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। इस तरह उनका साहित्य से संबंधित अनेक क्षेत्रों में काम करने का जो एक उद्देश्य था वो उनकी कृतियों में झांकता रहा है। कन्नड़ साहित्य में ही उन्होंने नहीं लिखा बल्कि हिंदी साहित्य भी उनके खास उनके योगदान से अछूता नहीं है। एक समृद्ध परंपरा को उन्होंने जीवंत रखा।

गिरीश कर्नाड जी के साहित्य क्षेत्र में योगदान की बात करें तो उनका ये विचार था कि वो कवि बनेंगे

लेखन की बात करें तो गिरीश कर्नाड जी भारतीय नाट्य लेखन के एक ऐसे स्तंभ के तौर पर स्थापित हैं जिन्होंने नाटकों के माध्यम से न केवल अपने पाठकों के साथ एक सार्थक संवाद की स्थिति बनाई बल्कि भारतीय रंगमंच को एक ऐसी ऊर्जा से भर दिया जिससे कि देश विदेश में भारतीय नाट्य मंच को एक नई पहचान मिली, ऊर्जा मिली। अपने एक साक्षात्कार में गिरीश कर्नाड जी ने बताया था कि कैसे बचपन में जब बिजली की सुविधाएं सीमित थीं और अंधकार से जो का माहौल रहता था, बिजली नहीं थी, तो ऐसे में मनोरंजन का एकमात्र साधन किस्से कहानियां ही हुआ करती थीं, चाहे वो बच्चों के आपस की कहानियां हो या घर में माँ या दादी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां। उनका खास मतलब यही था कि कल्पना और मिथक के संसार से स्मृतियों के द्वारा मोती ढूंढ लाने की सृजनशीलता के पीछे गिरीश कर्नाड जी के बचपन की स्मृतियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा जो उनके साहित्य में एक विशेष रूप से समृद्ध परंपरा का वाहक बना।

लेखन में तो बेहद समृद्ध परंपरा का उन्होंने निर्वाह किया। गिरीश कर्नाड फिल्मों की ओर मुड़े तो यहाँ भी श्रेष्ठता के साथ शीर्ष पर ही वो नजर आए। 1970 के ही दशक में गिरीश कर्नाड जी ने हिंदी सिनेमा में अपने यश को सिद्ध किया। श्याम बेनेगल की निशांत और मंथन जैसी फिल्मों में वो नजर आए, तो वहीं वो नजर आए स्वामी फिल्म में, जो कि बासु चटर्जी की फिल्म थी। और इस फिल्म में उनके कमाल के अभिनय को दर्शकों ने बहुत सराहा है। और जैसा कि मैंने बताया था, 1986-87 के दौरान आर के नारायण की प्रसिद्ध मालगुडी डेज पर आधारित टीवी सीरीज के जरिए वो घर घर तक पहुँचे। कई फिल्मों में उन्होंने अपनी ख़ास भूमिकाएं निभाईं, जैसे मेरी जंग, अपने पराये, उत्सव, सुरसंगम, सूत्रधार, स्वामी, टाइगर, जिंदा है, गोधूली जैसी कई फिल्में हैं जिसमें उनके किरदार को दर्शक कभी नहीं भूल पाए। सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण, 1992 में कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1998 में ही कालिदास सम्मान। इसके अतिरिक्त गिरीश कर्नाड जी को कन्नड़ फिल्म संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मशहूर अभिनेता लेखक गिरीश कर्नाड जी 10 जून 2019 को इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। लेकिन उनके लेखन की बात हो, उनके नाटकों की बात हो, या फिर उनकी फिल्मों में किरदारों की बात हो, उनके निर्देशन की बात हो, उनके ज़रिए हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। आज सदाबहार फिल्मी गीत में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए अंजू पांगती को भी। नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं, अब हमारी सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकी समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है। वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र

0: सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक दो सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के GNSS रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शैलस्वर। इस कार्यक्रम में आज सुनिए नारायणी धर्मसत्तू और साथियों का गाया ये कुमाऊँनी लोकगीत।

श्रुतो नारायणी, धर्मसत्तु और साथियों का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, हमारे आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

तो पहले ने एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। अब से कुछ देर बाद 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता साथी सुनते हैं 5:45 पर। 6:41 पर भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा। ग्राम जगत कार्यक्रम 7 प्रसारित होगा। आज चर्चा का विषय होगा पर्वतीय क्षेत्रों में सोयाबीन की उन्नत प्रजातियाँ एवं उसकी वैज्ञानिक खेती। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लोकगाथा भनारी नैत का भाग एक हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:00। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10:00। ये था हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल की दोनों सभाओं पर। श्रोताओं, हमारी कल की प्रातःकालीन सभा का आरंभ होगा 5:55 पर। सुबह 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम में सुनिएगा खलील जिब्रान के विचार। आराधना कार्यक्रम के तहत भक्ति गीत प्रसारित होते हैं सुबह 6:10 पर। दिवस इतिहास आधारित आज की बात हम करते हैं 6:40 पर। विविधा कार्यक्रम आप सुनते हैं 6:50 पर। कल सुबह 7:10 पर श्री रामचरित मानस गान पाठ का 121वां भाग प्रसारित किया जाएगा। कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी आप सुनते हैं सुबह 7:30 पर। कल सुबह कलाकार होंगे शंभू प्रसाद और साथी और विनोद कुमार। हिंदी कार्यक्रम में 7:50 पर कल सुबह सुनिएगा भारत सरकार के 12 वार्ता मिशन लाइफ की जीवन शैली कचरे की नाड़ी रहेगी थैली। वार्ताकार होंगी श्रीमती अनुराधा भाकुनी। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत निर्झर हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 9:05 पर। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरंग। कलाकार होंगे अदनान सामी मिताली सिंह लता मंगेशकर। फिल्म संगीत सुनिएगा 10:35 पर सुरबहार कार्यक्रम में। फिल्म संगीत हम आपको फिर सुनवाएंगे 11:00 सैनिकों के लिए कार्यक्रम में। मध्याह्न 12:00 मेरी पसंद कार्यक्रम में। 2:45 पर फिल्म संगीत एक ही फनकार और सभा के समापन में 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रमों के तहत। कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी लोकगीतों की महक समेटे लोकसुर कार्यक्रम सुनिएगा 11:30 पर।

12:30 पर कल दोपहर अर्पण कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी। सामाजिक समारोहों में नशा निषेध विषय पर श्री भीम सिंह अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता अल्मोड़ा से दीपा जोशी की बातचीत। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर 1:15 पर। 1:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1304वीं कड़ी प्रसारित होगी। खेती की बातें काश्तकार भाई सुनते हैं 2:30 पर। कल इस कार्यक्रम में वार्ता प्रसारित होगी श्री हरीश चंद्र जोशी की। विषय होगा कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट एवं रोग प्रबंधन। हमारी कल की सायंकालीन सभा का आरंभ होगा शाम 4:00 संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5:05 पर रोजाना की तरह सेल्सर कार्यक्रम प्रसारित होगा। कल कलाकार होंगे नारायण प्रसाद कन्याल। युवा साथी वाणी कार्यक्रम सुनेंगे 5:15 पर। कल चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता साथी सुनते हैं 5:45 पर। कल इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती और नशा मुक्त भारत अभियान। भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा 6:41 पर। काश्तकार भाई किसान वाणी कार्यक्रम सुनेंगे 7:00। कल इस कार्यक्रम में जैविक कृषि का उपयोग कर फल उत्पादन एवं सब्जी उत्पादन करते कृषक मनीष कुमार सती से नेहा जोशी की भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8:00। रात्रि 10:00 सुनिएगा सुगम संगीत। कल रात्रि 10:30 पर नाटक प्रसारित होगा ग्रैंड स्लैम। लेखक होंगे NS शिव स्वामी। श्रोताव यह था कार्यक्रम विवरण हमारे आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र हिमानी बोरा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आज के समय में युवाओं, बच्चों और अभिभावकों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। आज ऑनलाइन गेम्स का नशा बच्चों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, तकनीकी ने हमारे जीवन को आसान बनाया है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने ज्ञान, मनोरंजन और संचार के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन हर तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। ऑनलाइन गेम्स भी ऐसी ही एक चुनौती बनकर सामने आए हैं। मनोरंजन के लिए शुरू किया गया ये साधन आज कई लोगों के लिए एक ऐसी आदत बन गया है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता नजर आता है। आज छोटे छोटे बच्चे, युवाओं तक हर वर्ग के लोग ऑनलाइन गेम्स की दुनिया में घंटों बिताते हैं। शुरुआत में ये केवल समय बिताने का माध्यम होता है, लेकिन धीरे धीरे कई लोग इसके इतने आदि हो जाते हैं कि पढ़ाई, काम, परिवार और स्वास्थ्य तक प्रभावित होने लगते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन गेम्स का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी रोमांचक दुनिया है। हर स्तर पर मिलने वाली सफलता, नए मिशन, प्रतियोगिता और पुरस्कार खिलाड़ियों को बार बार खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि कई लोग ये महसूस ही नहीं कर पाते कि वो कब इस आदत का शिकार बन गए हैं। इस बढ़ते नशे का सबसे अधिक प्रभाव आज विद्यार्थियों पर देखने को मिलता है। पढ़ाई पर ध्यान कम होने लगता है, समय का सही उपयोग नहीं हो पाता और परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होने लगता है। कई छात्र देर रात तक मोबाइल गेम खेलते हैं, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं होती और दिन भर थकान बनी रहती है। दोस्तों, ऑनलाइन गेम्स का असर केवल शिक्षा पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में दबाव, सिरदर्द, गर्दन दर्द जैसी अनेक समस्याएं होने लगती हैं और मानसिक रूप से व्यक्ति चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त महसूस करता है।

करता है। कई ऑनलाइन गेम्स में पैसों का लेन देन भी शामिल है, जिससे युवा आकर्षित होकर पैसे खर्च करते हैं और धीरे धीरे यही आदत उन्हें आर्थिक तंगी और गहरे डिप्रेशन में लेके जाती है। दोस्तों, इनसे बचने के लिए सबसे पहले अपना समय प्रबंधन आवश्यक है। हमें खेल कूद, किताबें, म्यूजिक और अपने करियर पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे हम ऐसी लतों से बच सकें। प्रिय श्रोताओं, तकनीकी हमारे लिए बनी है, हमें तकनीक का गुलाम नहीं बनना। ऑनलाइन गेम्स मनोरंजन का साधन मात्र हैं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं। यदि हम संतुलन बनाए रखें तो तकनीकी का लाभ भी उठा सकते हैं और इसके दुष्प्रभावों से भी बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो थी कुछ सूक्ष्म सी जानकारी। अब करते हैं कार्यक्रम में आपका मनोरंजन और सुनाते हैं आपको एक प्यार भरा गीत।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कनाडा,
8: चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के अंक विज्ञान जगत की ओर। दोस्तों, आज विज्ञान की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो बातें कभी कल्पना लगती थी वो अब हकीकत बनती जा रही हैं। इन्हीं अद्भुत उपलब्धियों में से एक है रोबोटिक्स। आज रोबोट केवल कारखानों तक सीमित नहीं बल्कि हमारी दैनिक जरूरतों में भी शामिल होते नजर आते हैं। AI और रोबोट्स मिलकर भविष्य की एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इस बारे में अधिक जानते हैं और सुनाते हैं आपको हमारी युवा साथी प्रीति चौहान के साथ हुई ये भेंट वार्ता।
9: बहुत बहुत स्वागत है प्रीति आपका हमारे कार्यक्रम युगवाणी में।
10: धन्यवाद हिमानी।
9: सबसे पहले तो प्रीति, आप हमारे श्रोताओं को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए।
10: मेरा नाम प्रीति चौहान है और मैं अल्मोड़ा से रहने वाली हूँ।
9: जी प्रीति, बिल्कुल। तो प्रीति, जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं कि विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और जो रोबोट्स हैं वो आजकल बहुत ज्यादा उनका चलन चल गया है, तो आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रोबोटिक्स को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आपके इसके प्रति क्या विचार हैं?
10: देखो हिमानी, रोबोटिक्स केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रह गया है। आज हम स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम, अस्पतालों का उपयोग होने वाली मशीनें और मोबाइल एप्स के माध्यम से इसकी झलक देखते हैं। कई शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में भी स्वचालित तकनीकों का उपयोग हो रहा है। रोबोटिक्स का उद्देश्य मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाना है। आने वाले समय में यह तकनीक हमारे दैनिक कार्यों का सामान्य हिस्सा बन सकती है।
9: जी प्रीति, आपने बहुत ही सही कहा है कि आज रोबोटिक्स केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रह गया है। आज हम इसे घर में होने वाले छोटे छोटे काम, स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर और ट्रैफिक प्रबंधन और कई जगहों पर देख सकते हैं। प्रीति, आप हमें ये बताइए, क्या जो रोबोट है उसने हमारी पढ़ाई और सीखने के तरीके को बदला है या फिर भविष्य में ये हमारी चीजों को बदल सकते हैं?
10: हाँ, रोबोटिक्स शिक्षा के क्षेत्र में नई संवेदनाओं को खोल रहा है। स्मार्ट शिक्षण उपकरण और AI आधारित प्लेटफॉर्म विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाई करने में मदद कर रहे हैं। इससे सीखना अधिक रोचक और प्रभावी बन रहा है। हालांकि शिक्षक की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि शिक्षा केवल जानकारी देना ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण भी है। इसलिए रोबोट शिक्षा का स्थान नहीं लेंगे।

0: बल्कि उनकी सहायता करेंगे।
1: जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पढ़ाई केवल जानकारी को इकट्ठा करना ही नहीं है, बल्कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसके निर्माण में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो भले ही रोबोटिक्स और इनका विकास हो जाए, लेकिन शिक्षकों की भूमिका हमेशा वैसी ही रहेगी। प्रीति, स्वास्थ्य सेवाओं में रोबोटिक्स का क्या योगदान है?
0: आज नई अस्पतालों में रोबोटिक तकनीक का उपयोग जटिल सर्जरी और मरीजों की देखभाल में किया जा रहा है। इससे इलाज अधिक सटीक और सुरक्षित हो रहा है। कुछ रोबोट दवाइयाँ पहुँचाने और मरीजों की निगरानी करने और डॉक्टरों की सहायता करने का कार्य भी कर रहे हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है और चिकित्सा क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। आप ये बताइए कि क्या रोबोट्स के बढ़ते उपयोग से नौकरियों पर असर पड़ सकता है? क्या ये रोबोटों का आना भविष्य में बेरोजगारी को बढ़ा सकता है?
0: हाँ, यह एक महत्वपूर्ण चिंता है। कुछ ऐसे कार्य जो बार बार और एक जैसे होते हैं, उन्हें मशीनें आसानी से कर सकती हैं, लेकिन उसके साथ ही रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग, डाटा विश्लेषण और तकनीकी प्रबंधन जैसे नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। इतिहास बताता है कि नई तकनीकें चुनौतियां के साथ नए अवसर भी लेकर आती हैं, इसलिए युवाओं को नई तकनीकों के साथ खुद को भी अपडेट रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि नई तकनीकी जो है वो अपने साथ नई चुनौतियाँ और नए अवसर लेके आती है, इसलिए आज युवाओं के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो खुद को अपडेट रखें और नई नई तकनीकों को सीखने का प्रयास करें। प्रीति, आप ये बताइए कि युवाओं के लिए रोबोटिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? वो इस पर क्यों इन्वेस्ट करें और वो इसे क्यों सीखें? इसकी क्या ज़रूरत है?
0: आज का जो युवा है वो भविष्य का निर्माता है। रोबोटिक्स केवल इंजीनियरिंग का विषय नहीं है, बल्कि समस्या समाधान, नवाचार की सोच भी विकसित करने का माध्यम भी है। इस क्षेत्र में करियर के अनेक अवसर मौजूद हैं। यदि युवा तकनीक को समझकर उनका सकारात्मक उपयोग करे तो वे समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। रोबोटिक्स भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है।
1: जी प्रीति, बहुत सही बात है कि रोबोटिक्स आने वाले समय में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनेगा, इसलिए शायद ज़रूरी है कि हम सभी धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट उस क्षेत्र की ओर डेवलप करें। प्रीति, आप ये बताइए कि भविष्य की दुनिया में इंसान और रोबोट का रिश्ता कैसा होगा, कि आप इसे किस प्रकार से देखती हैं?
0: भविष्य में रोबोट हमारे सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। वे कठिन, जोखिम भरे और समय लेने वाले कार्यों को आसान बना सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने, भावनाओं को समझने और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी इंसानों की ही रहेगी। इसलिए भविष्य की दुनिया प्रतिस्पर्धा की नहीं, बल्कि इंसान और तकनीक के सहयोग की दुनिया होगी।
1: जी बिल्कुल सही बात है कि भविष्य में रोबोट हमारे सहयोगी के तौर पर काम कर सकते हैं और हो सकता है कि ये दुनिया प्रतिस्पर्धा की ना होकर एक सहयोग की दुनिया हो, जहाँ पर तकनीकी और इंसान दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे हों। क्या आपको लगता है कि विज्ञान और तकनीकी के इस दौर में जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनका महत्व जो है वो कम हो जाएगा?
0: नहीं, विज्ञान और तकनीक चाहे जितनी भी उन्नति कर ले, मानवीय संवेदनाओं का स्थान नहीं ले सकते। मशीनें कार्य कर सकती हैं, लेकिन प्रेम, करुणा, सहानुभूति और नैतिक नेतृत्व केवल मनुष्य ही दे सकता है। भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता यही होगी कि हम तकनीकी प्रगति के साथ मानवीय मूल्यों को सहज कर रखें, तभी विकास वास्तव में सार्थक माना जाएगा।
1: हाँ प्रीति, बहुत सही बात है कि मानवीय संवेदनाओं का स्थान कभी भी कोई नहीं ले सकता। भले ही मशीनें हमारे कार्यों को आसान करें, लेकिन इंसानों की मूलभूत ज़रूरतें जो कि प्रेम, करुणा, सहानुभूति और बहुत सारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए मानवीय संवेदनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। प्रीति, आप साथ ही ये भी बताइए कि विज्ञान के विकास ने हमारे जीवन को सबसे अधिक किस प्रकार से बदला है?
0: विज्ञान के विकास ने हमारे जीवन को पहले की तुलना कहीं अधिक आसान और तेज सुविधाजनक बना दिया है। आज संचार, परिवहन, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। जहां पहले किसी सूचना को पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, वहीं आज कुछ सेकंड ही में

0: ही दुनिया किसी भी कोने तक संदेश पहुंच जाता है। आधुनिक चिकित्सा ने अनेक गंभीर बीमारियों के उपचार को संभव बनाया है। विज्ञान ने केवल सुविधा ही नहीं दी बल्कि जीवन बेहतर बनाया है। इसलिए आधुनिक समाज की प्रगति में विज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: जी प्रीति, बिल्कुल सही बात है। अंत में प्रीति, आप हमें ये भी बताइए कि जो ये रोबोटिक्स है और भविष्य की दुनिया है, इससे हमें क्या सीख मिलती है?
0: रोबोटिक्स हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। नई तकनीकों से डरने की बजाय उन्हें समझना और उनका जिम्मेदारी से उपयोग करना सीखना चाहिए। विज्ञान तभी सार्थक है जब यह मानव कल्याण के लिए काम करे। यदि हम

0: भविष्य की दुनिया अधिक सुरक्षित, समृद्ध और अवसरों से भरी हो सकती है।
1: जी प्रीति, बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है और बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान तभी तक सार्थक है जब वो मानव कल्याण के लिए काम करे और ज्ञान, नैतिकता और तकनीकी के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति कि आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए।
0: धन्यवाद।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के इतिहास की तरफ और डालते हैं नजर आज यानी 10 जून को घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1246 में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम दिल्ली के शासक बने थे। आज के दिन वर्ष 1840 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहला टेलीग्राफ लिंक शुरू हुआ था। दोस्तों, वर्ष 1931 में आज के दिन नॉर्वे ने पूर्वी ग्रीनलैंड पर कब्जा किया था। वर्ष 1946 में आज के दिन राजशाही खत्म होने के बाद इटली गणतांत्रिक राष्ट्र बना था। वर्ष 1966 में आज के दिन वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग का महाराष्ट्र के नासिक जिले से उत्पादन शुरू हुआ था। दोस्तों, वर्ष 1967 में आज के दिन इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर युद्ध विराम को स्वीकार करके 6 दिन से चल रहे अरब युद्ध की समाप्ति की थी। इस दौरान इसराइल ने यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र माने जाने वाले यरूशलम पर पूरी तरह से कब्जा किया था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1972 में मुंबई के मंडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण किया गया था। वर्ष 1986 में आज के दिन भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स में पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 2003 में नासा ने मंगलयान रोवर लॉन्च किया था। आज के दिन वर्ष 2021 में भारतीय एयरटेल के प्रमुख परिचालक अधिकारी अजय पुरी को 2021-22 के लिए उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था। चलिए दोस्तों, एक नज़र आज हुए मुख्य व्यक्तियों के जन्म पर। वर्ष 1955 में आज के दिन सुप्रसिद्ध भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का जन्म हुआ था। वर्ष 1906 में आज के दिन भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक दामोदर मेनन का जन्म हुआ था। वर्ष 1921 में आज के दिन जाने माने भारतीय कवि शिवदीन राम जोशी का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के इतिहास में बस इतना ही।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जिसमें हम रोज पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और देते हैं उत्तर बीते दिन पूछे गए प्रश्न का। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, जिसका सही उत्तर है 15 नवंबर वर्ष 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है

डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया। ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन और शाहनवाज अब्बासी। एसएम जावेद कुमला झारखंड से। ग्राम पुतकी कला कवर्दा छत्तीसगढ़ से विनय शंकर पांडे और नयन पांडे। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी दामोदर मेनन का जन्म कब हुआ था? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो लिख भीजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। हमें रहता है इंतज़ार आपके सही उत्तर का। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं पुनः एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपने रेडियो मित्र हिमानी को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायणी।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के हरि सिंह सिजवाली की नमस्कार। श्रोताओं, बदलती दुनिया में सभ्यताओं के बीच संवादक अनिवार्यता, एकजुटता, संवाद और सहयोग बहुत थोड़ा हो सकता है। आपसी भेदभाव और पूर्वाग्रह के समाप्त करना, आपसी समझ और विश्वास के बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच संबंधों के मजबूत करण और वैश्विक एकजुटता के सुदृढ़ करण सबसे प्रभावी तरीका यही छू। यह लीजिए, संयुक्त राष्ट्र स्थापना एक मूलभूत विश्वास पर है कि लेकिन संवाद शांतिक मार्ग छो। सभ्यताओं के बीच संवादक जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून यानी कि आज पूरे विश्व स्तर पर मनाई जाए, जे एक मुख्य उद्देश्य शांति छू। नाइन ठोल बातों में आपसी मनमुटाव नहीं कर बेर। हर देश एक सभ्यता अगर आपसी संवाद स्थापित करो तो युद्ध जस स्थिति कभी नहीं होगी। संवादक माध्यम और ले यो एक दूसरे और ज़्यादा कई तरीकों मदद कर सकाल। बस यही उद्देश्य पूर्ति के लिए जी आज एक दिन के सभ्यताओं के मध्य संवादक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाए। श्रोताओं, यो अंतर्राष्ट्रीय दिवस आम जनता के चिंताक मुद्दों पर शिक्षित करण, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, संसाधनों के जुटूँ और मानवता उपलब्धि पर जश्न मनूँ और इनों के मजबूत करने अवसर लहनी। तो श्रोताओं, यह तो थी बातचीत। कार्यक्रम में अगला आपको सुन लग रहा शंकर उप्रेती और दीवान कनवाल का ही ये लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: श्रोतो कार्यक्रममा अघिल्ला बोलीजीले लिएर आएका एक भेटवार्ता, जहाँ विषय छु महिलाओंको रोजगारके अवसर, विषय पर री परियोजना समन्वयक विकास खण्ड लमगढ श्री हरिश्चन्द्र सनवाल जुन्द गरी गई भेट।
5: भेटवार्ता पर उपस्थित हैं विकास खण्ड लमगढ़ा में कार्यरत री परियोजना समन्वयक श्री हरीश चंद्र सनवाल जी। सनवाल जी नमस्कार।
6: नमस्कार
5: सनवाल जी, आप री परियोजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। री परियोजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य आप विकास खंड स्तर पर ग्राम पंचायतों में यहाँ से करवाते हैं, थोड़ा इसकी जानकारी हमारे साथ।
6: हरीश सनवाल, मैं अभी यहाँ पर विकास ग्रामोत्थान री परियोजना के अंतर्गत अभी ब्लॉक समन्वयक के पद पर हूँ। हमारे यहाँ पर जो परियोजना के अंतर्गत जो कार्य है हमारा है कि मेन उद्देश्य है कि पलायन को रोकना और स्वरोजगार पैदा करना। जो लोकल संसाधन है हमारे गांव में, जो लोकल संसाधन है, आय अर्जन गतिविधियां कोई व्यवसाय कर सकते हैं, अपने पर्सनल व्यवसाय करें या फिर सामूहिक व्यवसाय करें, उसमें महिलाओं को जैसे समूह में जुड़ा होना अनिवार्य होना चाहिए। समूह के लिए हमारे वहां से जो भी योजनाएं आती हुई।
5: अच्छा, केवल समूह की महिलाएं
6: कर सकता है?
5: अच्छा, केवल समूह की महिलाएं ही जो है वो री परियोजना का लाभ ले सकती है। तो सनवाल जी, ये री परियोजना जो है, आप थोड़ा सा इसके विषय में थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे श्रोताओं को समझाएंगे कि इससे कैसे जुड़ा जा सकता है और क्या क्या कार्य इससे कराया जाता
6: है। इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे इसमें समूह बने हैं, समूह के द्वारा फिर एक गांव में जैसे हमने एक समूह बना दिया 6 या 5 लोगों से कम समूह, कम से कम 5 लोग होने चाहिए एक समूह में, और एक गांव में जैसे हमने 5 समूह बना लिए तो एक ग्राम संगठन बनता है वहाँ पर। तो हर समूह से एक एक सदस्य उस ग्राम संगठन में प्रतिभाग करेगा, तो फिर 12 या 15, 10 लोगों का, कम से कम 10 या 12 लोगों का वो ग्राम संगठन बनेगा पूरे गाँव लेवल पर। तो उस ग्राम संगठन के द्वारा फिर ये होता है कि जैसे एक न्याय पंचायत में एक क्लस्टर बनता है हमारा, जैसे हर ग्राम संगठन से फिर सदस्यों को लेते हैं, जो एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनती है, और उस फेडरेशन का होता है सहकारिता में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसमें ये होता है कि हमारी परियोजना उसको फिर गोद लेती है, उस सहकारिता को उसको अडॉप्ट करते हैं हम लोग, उनके साथ अनुबंध होता है, और अनुबंध के आधार पर फिर हम उसमें स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमने एक न्याय पंचायत में एक क्लस्टर को ले लिया, वो अधिकतर एक न्याय पंचायत एक ही क्लस्टर बनता है, तो उसमें फेडरेशन उसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन करके सीएलएफ भी बोलते हैं, तो उसमें हम फिर स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं, उसमें विज्ञप्तियां निकालते हैं, उसमें लोकल के जो स्टाफ, लोकल की जो समूह की महिलाएं हैं उनके परिवार से भी आ सकते हैं, और वैसे उसमें ऑल उत्तराखंड से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो उसमें 4 स्टाफ रखते हैं, उसमें 2 ग्रुप मोबिलाइजर, 1 बिजनेस प्रमोटर और 1 अकाउंटेंट। तो वो सारी गतिविधियां फिर वो ऑफिस के माध्यम से जो कार्यालय खोलेंगे वहीं पर, जो भी इनको हमारे वहां क्या होता है, जैसे लोकल संसाधनों के आधार पर उद्यम

0: स्थापना की गतिविधियां करनी है या फिर कोई खाद बीज वगैरह इनको जैविक को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोग काम करते हैं उसमें। जैसे कृषि यंत्र बांटने हैं तो वो सहकारिता के माध्यम से करते हैं, और एक इनको वो देते हैं आउटलेट टाइप से कि उसमें व्यवसाय करें वो लोग। उसमें व्यवसाय इस तरीके से करेंगे कि जैसे हमारे लोकल उत्पाद होते हैं तो उनके लिए एक दुकान जैसे हम खोल लेंगे कलस्टर लेवल पर, तो उसमें अपनी प्रोडक्ट को भी मार्केटिंग कर सकते हैं उन तरीके से भी होता है उसमें।
1: तो सोनवाल जी, अभी आपने विकास खंड लमगड़ा में कुछ ऐसे रोजगार शुरू किए होंगे, जो थोड़ा सा उसके विषय में उनके विषय में आप हमारे श्रोताओं को समझाएंगे।
0: मैं ये कि कुछ तो हमारे वहाँ से पहले शुरुआत में हमने अल्टापुर के किए थे, जो अति गरीब परिवार है, जैसे किसी की महिलाएं विधवा कोई महिला है, उसके बच्चे नाबालिग हैं, और उनके फिर उनके साथ हम लोगों ने 35,000 उनको दिया समूह के माध्यम से। 35,000 से वो आय अर्जन गतिविधियां कुछ करते हैं। ऐसे में हमारे वहाँ बहुत सारे हर न्याय पंचायत में हमने 15 से 20 महिलाएं हर जगह हमने उसमें चयन किए। उसके बाद फिर उसके साथ ही जो व्यवसाय करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ काम पहले से कर रहे हैं, जैसे सिलाई का है या कोई तरीके का है, स्वरोजगार करना चाहते हैं, जो ब्यूटी पार्लर या उस टाइप का काम हो उसको भी हम करते हैं। अभी हमने एक यहाँ पर एक लमगड़ा मार्केट में है, कोई मंजू पांडे करके, उनके हस्बैंड कम उम्र की है, वो अभी 35-40 साल के, तो उसके हस्बैंड गुजर गए, तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमने उनको बताया परियोजना के योजनाओं के बारे में, तो उसने कहा मैं कर सकती हूँ इसको, तो उसने कॉस्मेटिक की दुकान खोली शुरुआत में, तो उससे उसने शुरुआत करी। उन्होंने कहा अब वो आज अपने उसकी भी अपने पैरों पर खड़ी हो गए, अच्छी बहुत अच्छी उसने दुकान चला रखी। हमने उसको 1,00,000 का सपोर्ट किया, 1,00,000 में हमने किया था उसको, 30,000 उसने बैंक से लोन लिया, 50 उसने हमने उनको 30,000 हम देते उनको, 50,000 बैंक से हम, 30,000 हमारा, और 20% खुद लगाना होता है। तो उसने दुकान खोली, तो दुकान से आज वो अच्छी इनकम कर रही है, मतलब एक अपने परिवार का बच्चे, दो बच्चे पढ़ाती है और अपना घर का खर्चा चला रही है उससे। ऐसी अभी सिलाई का हमने एक वहाँ पर किया था, मार्केट साइड में ही है, उसका भी लमकोट की रहने वाली है, किरण बिस्ट करके है, उसको हमने सिलाई का 1,00,000 का उसको भी दिया, उसको 3,00,000 का दिया था हमने, 1,00,000 का पहले दिया था, उसके बाद 3,00,000 का हमने उसको किया, 3,00,000 में हमने उसको 75,000 हमारी परियोजना से दिया, उसको उसने लोन लिया 1,50,000 का बैंक से, तो बाकी उसने अपना पैसा लगाया, तो 3,00,000 का टोटल मिला के वो परियोजना का काम उसने शुरू किया, सिलाई का, तो
1: वो सिलाई का सिलाई सेंटर खोला होगा,
0: सिलाई, हाँ सिलाई अपना खुद करती थी वो, घर से पहले सिलाई करती थी, लेकिन उसने फिर सिलाई का काम शुरू किया, उसके बाद उसने आज उसका फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, हमारे जो पत्रकार बंधु वगैरह आए उसके पास, जो इंटरव्यू लिया, मुख्यमंत्री जी को पास भी गया उनका इंटरव्यू, तो वो करना चाहती थी अधिक लोगों को, आज उसने बड़ा को 10,00,000 का प्लान दिया है हमने, तो आईफेड मिशन जो हमारे जो इसका बजट आता है, आईफेड मिशन का ही बजट आता है यहाँ पर, तो आईफेड की टीम ने उसका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था वहाँ से, इटली रोम से उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें वो अच्छी नहीं रहा उसका, तो वहाँ से ही उन्होंने बोला कि इस महिला को बड़ा काम दिया जाए, जो अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ सके। आज उसके साथ 6-7 महिलाएं तो डायरेक्ट काम करते हैं, इनडायरेक्ट में बहुत सारी महिलाएं हैं, और स्कूलों के डेस्क भी वो सिल रही है, और बाकी लोकल में तो वो कर ही रही है। अभी सिलाई का वहां पर हमने एक सेंटर भी खोला है कि उसके वहां सिलाई सेंटर भी चला रही है वो।
1: अच्छा।
0: तो अभी करीब 25 महिलाएं वहाँ सिल रही है, 1 महीने की ट्रेनिंग आजकल चल रही है वहाँ।
1: काफी अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो असहाय महिलाएं हैं और जो समूह की महिलाएं हैं उनको आप बहुत एक मतलब रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए संसाधन उनके मुहैया करा रहे हैं, तो काफी अच्छा काम भी है ये। और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने क्षेत्र के, अपने जो ग्रामीण अंचलों की जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, तो वो सबसे पहले तो समूह में जुड़े हैं वो महिलाएं, क्योंकि समूह आज बहुत सारी सरकार की जितनी भी हमारे योजनाएं चल रही है, तो वो समूह के लिए पहले प्राथमिकता है उनमें। हर विभाग से कोई भी कार्य हो रहा है तो समूह के माध्यम से हो रहा है, तो हमारी जो परियोजना काम कर रही है वो और पूरे उत्तराखंड में कर रही है, तो और उसमें भी समूह में जुड़ा होना चाहिए उस महिला को, तभी उसको हम लाभ दे सकते हैं
1: जी।
0: और इसमें दो प्रकार के हमारे वहाँ से जो लाभ मिलते हैं, उसमें दो प्रकार के, एक तो सामूहिक उद्यम है और एक व्यक्तिगत उद्यम है। व्यक्तिगत में 1,00,000 और 3,00,000 की स्कीम है, सामूहिक में हम देखें 10,00,000 और उससे बड़ा भी होता है, 25% सब्सिडी हमारे वहाँ से मिलती है, तो बड़े प्लान भी कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये ऐसा है कि हमारे और भी बहुत सारे हमारे ये कृषि क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो कृषि के कार्य अच्छे कर रही महिलाएं, तो सामूहिक तौर पर वो भी कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग का कर सकते हैं, और मैंने तो दो ही बताए आपको, कॉस्मेटिक और सिलाई का, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो समूह की महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मेरा यही कहना है कि सभी है कि समूह में जुड़े, और उसका आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप समूह से जुड़े होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और अपने गांव में जहां समूह नहीं बने हैं तो वहां भी कोशिश करें कि समूह बनाए।
1: सोनवाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी

0: अच्छी बातें बताई और हमारे श्रोता आपकी इन बातों का, इन सुझावों का अवश्य लाभ उठाएंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: श्रोता वालों को सुनना अच्छा। रीप परियोजना समन्वयक विकास खंड लमगढ़ श्री हरीश चंद्र सनवाल जिंदगढ़ करी गई भेंट। श्रोता कार्यक्रम में अखिल आपको सुन लग रहा रेखा उन्यालक गई ये गढ़वाल लोक की।

0: श्रुत वाला पर सुन लग रहा। अच्छा रेखा होने अलग गई या गड़बड़ लोक गीत।
1: ने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: आज हम बात करने वाले कृषि संबंधी कार्यों के लिए जी किसान बहन भाइयों को सरकार द्वारा जो बखत बखत पर ऋण उपलब्ध कराई जानी, इनमें है एक ऋण छूट KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मात्र 2% ब्याज सब्सिडी और 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन पर सस्त और आसान ऋण योजना यह सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जेल ऋण 4% प्रतिवर्ष ब्याज पर हर किसान के उपलब्ध कराई जाना करो। तो सतो यह ऋण योजना में आप कृषि भूमि आधार पर और आपू कहें फसलों के आधार पर ऋण निर्धारित करी जा, जो ऋण आपू कहें हर 6 महीने में चुकता करण पड़ो, फिर 6 महीने बाद चुकता कर फिर आपू कहें हर 6 महीने में दोबारा ऋण मिल जाए। हमें ऋण साल में दीवार रवि और खरीफ एक फसल को देखते हुए आपू कहें दी जा। जल किसानों कहें कृषि यंत्र बीज खाद उर्वरक इत्यादि इनर खर्च वहन करना के लिए आसानी है। तो श्रोताओं, यह ऋण आपको कहें अपन नज़दीकी बैंक शाखा पर आसानी से प्राप्त कह सकूँ जहाँ अपन बचत खाते छो। यह एक लीजिए आपको कहें भूमि प्रमाण पत्र, खाता खतौनी, परिवार रजिस्टर नकल, आधार, पैन, बैंक पासबुक, फोटो बैंक में देनी होनी। यह ऋण सबसे आसान और जल्दी प्रक्रिया होने वाला ऋण छो जो किसानों की सुविधा के लिए बनाई जा रहा। तो श्रोताओ, यह तो अच्छी बातचीत कार्यक्रम में अखिल लोगों से लग रहा है प्रहलाद सिंह मेहरा गई यह लोकगीत।

0: ਸੁਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਰਚਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਮਾਉਣੀ ਲੋਕ ਗੀਤ।
1: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला लग रहा गोकुल बिष्ट और डगड़ियों गई ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: শ্রোতাবল্লা বল শোনো গোকুল বিষ্ণু অর্ধগুণীয় গাই ইয়ো মাওনি লোকগীত।
1: आप जानते ही होंगे कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: तो कार्यक्रम में अगला लोगों को सुन लग रहा बिमला बोरा और दगड़ियों गई एक आज कुमाऊं लोकगीत।

करला उनी सोरला मलिगु की राज कर छ गंगू।

श्रोता विमला बोरा और दगड़ियों कई यही लोकगीत दगड़े आज उत्तरायण कार्यक्रम संपन्न करण बखत है वो ढोल फिर भेंट हो तब तक अगली जी हरी सिजवाली के दिवाज्ञा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। राज्य में उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार नीति 2026 जारी। विज्ञान आधारित विकास, नवाचार और आत्मनिर्भर उत्तराखंड को मिलेगा नया आधार। प्रदेश को दालचीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से देहरादून में कल से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और श्री कैंची धाम में वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने की बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने और ऐतिहासिक कार्यकाल पर प्रदेश की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं और सीमांत क्षेत्रों के विकास को नई गति मिली है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो देश की आजादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। और 12 वर्षों में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है, भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। मैं प्रधानमंत्री जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारे भूमि उत्तराखंड से उनको बहुत लगाव है।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार नीति 2026 जारी कर दी गई है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को विज्ञान प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। एक रिपोर्ट।
3: नई नीति में अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों के समाधान के लिए विज्ञान और तकनीक का प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया है। नीति का लक्ष्य

आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की दिशा में राज्य को आगे बढ़ाना है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर पर एक सलाहकार निकाय का गठन किया जाएगा। साथ ही अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकेंद्रीकृत संस्थागत व्यवस्था विकसित की जाएगी। नीति के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और स्टार्टअप्स में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इकाइयों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक जानकारी, शोध निष्कर्षों और संसाधनों तक सभी हितधारकों की सुगम पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री

0: स्टार्टअप्स में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार इकाइयों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक जानकारी, शोध निष्कर्षों और संसाधनों तक सभी हितधारकों की सुगम पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान में कहा कि यह नीति राज्य को ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विज्ञान और तकनीक का विस्तार करना नहीं, बल्कि उसे आम जनजीवन, सुशासन, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन से जोड़ना भी है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। देहरादून में कल से दालचीनी पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस संबंध में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि ये आयोजन प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी उत्तराखंड महक क्रांति नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को दालचीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में दालचीनी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे।
2: प्रदेश के अंदर दालचीनी के उत्पादन को कैसे बढ़ावा दें, उसकी कैसे हम मार्केटिंग करें, इसको लेकर एक सेमिनार जिसमें क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले इंडोनेशिया और श्रीलंका के वैज्ञानिक इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं देश के अंदर इस क्षेत्र में दालचीनी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं वैज्ञानिक यहाँ पर आ रहे हैं, जुड़े हुए किसान यहाँ पर आ रहे हैं। और हमने जो महक क्रांति 2026 बनाई है उसके तहत उस कार्यक्रम को
1: आगामी 15 जून को नैनीताल स्थित श्री कैंची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मेले को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित कराने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए अगले 10 दिनों के लिए रूट प्लान और यातायात प्रबंधन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही इसका प्रचार प्रसार करने को कहा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने पार्किंग क्षेत्र से मंदिर तक आने जाने के लिए शटल सेवा की भी उचित व्यवस्था करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने आकस्मिक परिस्थितियों के लिए निकासी योजना को भी अनिवार्य रूप से तैयार रखने के भी निर्देश दिए। मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान चलाया जा रहा है। 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संकलन कर रहे हैं ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। वहीं उत्तरकाशी के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने जिले के सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से बूथ लेवल अधिकारियों का पूरा सहयोग करने की अपील की है।
3: जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील है कि SIR का काम गतिमान है और हमारे जो 544 BLO हैं उनके माध्यम से घर घर आकर आपको इन्यूमिनेटर फॉर्म्स, गणना प्रपत्र दिए जाएंगे जिससे भरकर आपने पुनः वापस BLO को उपलब्ध कराना है। चूंकि यह एक समय सीमा का काम है तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब BLO आपको संपर्क करें तो उनको जो भी आवश्यक सहयोग हो वो देने का मैं अनुरोध करता हूँ।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज पौड़ी जिले के शारदा घाट श्रीनगर में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में योग अनुदेशकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. शैलेंद्र पांडे ने प्रतिभागियों से योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
4: आज प्रातःकाल जो है शारदा घाट श्रीनगर गढ़वाल में हमारा योग का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सामूहिक योग का आयोजन हुआ। बैठ करके करने वाले आसन, खड़े होकर करने वाले आसन जैसे दंडासन हो गया, वज्रासन हो गया, पादहस्तासन हो गए, भुजंगासन हो गए और उसके बाद हमने लेट करके हलासन का अभ्यास किया। उसके बाद प्राणायाम करते हुए योग के सत्र का समापन किया। हमारा आज का ये सत्र बहुत ही अच्छा

0: और मैं आपसे यही अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाए रखना है और 21 जून ही तक नहीं बल्कि हम अपने जीवन में इसको जीवन शैली के रूप में शामिल करना है और नित्य योग का अभ्यास करना है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। राज्य में उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार नीति 2026 जारी। विज्ञान आधारित विकास, नवाचार और आत्मनिर्भर उत्तराखंड को मिलेगा नया आधार। प्रदेश को दालचीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से देहरादून में कल से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है और श्री कैंची धाम में वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:40 होने को है। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत। भक्ति संगीत कार्यक्रम के शुरुआत में आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में ये भक्ति वंदन।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति वंदन अभी आपने सुना। इसी के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 होने को हैं। अब आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में मृणाल रतुड़ी। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनिन भारत का सबसे लंबा समय तक सेवा करने वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ये उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित करी। प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल का उपलक्ष्य में प्रदेश भर में जन कल्याण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करी जाला। प्रदेश तय दालचीनी उत्पादन का प्रमुख केंद्र का रूप में स्थापित कन का उद्देश्य से देहरादून में भोल बटिन द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित होनी च। और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों तय समय पर सहायता उपलब्ध करोण और सड़क सुरक्षा का प्रति जागरूकता बढ़ोन खुणी पौड़ी में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर को आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत का सबसे लंबा समय तक सेवा करने वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री बनीन। श्री मोदी 26 मई 2024 तें प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी छे। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 4,399 दिन को भेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडलन आज एक प्रस्ताव पारित करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर रोण पर बधाई देनी। मंत्रिमंडल की बैठक का बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवन बोली कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री का रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि पर बात करी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय पत्र लिखी। उनका सफल नेतृत्व का 12 वर्ष पूरा होन और ऐतिहासिक कार्यकाल पर प्रदेश की जनता की ओर से शुभकामनाएं दीनी। उन बोली कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व में भारतन विकास सुशासन राष्ट्रीय सुरक्षा सांस्कृतिक पुनर्गणना और वैश्विक प्रतिष्ठा का क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां लिनी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड का प्रति प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह और सहयोग खुणी आभार व्यक्त करी। उन बोली कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन में प्रदेश में विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं और सीमांत क्षेत्रों का विकास तय नई गति मिली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो देश की आजादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है और 12 वर्षों में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है। भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। मैं प्रधानमंत्री जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारे देवभूमि उत्तराखंड से उनको बहुत लगाव है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल का उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12 से 14 जून तक उपलब्धि प्रदर्शनी जन कल्याण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करी जाला। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों तय प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करी जालू, जैसे आम जनते सरकार की विकास यात्रा और उपलब्धियों की पूरी जानकारी मिल सको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों तक केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतिकरण तैयार करने का निर्देश देनी। उन बोली कि राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन में जनहित और विकास का संकल्प तय तेजी से अगेन बढ़ोनी च। मतदाता सूची तय पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनौन का उद्देश्य से प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान चले जाणु च। 7 जुलाई तक चलन वाला यह अभियान का तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्रों को वितरण और संकलन करना छन, जैसे कोई भी नागरिक मतदाता सूची में जुड़न से दूर न रह सको। वकी उत्तरकाशी का जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्यन जिला का सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से बूथ लेवल अधिकारियों की पूरी मदद करने की अपील करी।
2: जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील है कि SIR का काम गतिमान है और हमारे जो 544 BLO हैं उनके माध्यम से घर घर आकर आपको इन्यूमरेटर फॉर्म्स गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, जिससे भरकर आपने पुनः वापस BLO को उपलब्ध कराना है। चूंकि यह एक समय सीमा का काम है तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब BLO आपको संपर्क करें तो उनको जो भी आवश्यक सहयोग हो वो देने का मैं अनुरोध करता हूँ।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणु छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड ते फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: देहरादून में भोल बटिन दालचीनी पर द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करी जानी छे। ये संबंध में कृषि मंत्री गणेश जोशी आज देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताए कि यू आयोजन प्रदेश सरकार की उत्तराखंड महक क्रांति नीति का उद्देश्य तो अगेन बढ़ोनी चे। उन बोली ये कार्यशाला में दालचीनी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञ जुड़ला।
4: प्रदेश के अंदर दालचीनी के उत्पादन को कैसा बढ़ावा दें, उसकी कैसे हम मार्केटिंग करें, इसको लेकर एक सेमिनार जिसमें क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले इंडोनेशिया और श्रीलंका के वैज्ञानिक इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं देश के अंदर इस क्षेत्र में दालचीनी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं वैज्ञानिक यहाँ पर आ रहे हैं, इससे जुड़े हुए किसान यहाँ पर आ रहे हैं। और हमने जो महक क्रांति 2026 बनाई है उसके तहत उस कार्यक्रम को
0: आण वाला 15 जून तक नैनीताल स्थित श्री कैंची धाम का स्थापना दिवस का अवसर पर आयोजित होने वाला वार्षिक मेला की तैयारियों ते लेकी मुख्य सचिव आनंद वर्धनन आज सचिवालय में अधिकारियों दगड़ बैठक लीनी। उन मेला ते सुव्यवस्थित रूप से आयोजित कनखुणी पुलिस जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों ते जरूरी दिशा निर्देश दिनी। मुख्य सचिवन श्रद्धालुओं का आण जाण ते देखी अगला 10 दिनों खुणी रूट प्लान और यातायात प्रबंधन सहित आवश्यक व्यवस्था निश्चित करने का निर्देश देनी। ऊन पार्किंग क्षेत्र से मंदिर तलक आण जाण खुणी शटल सेवा की भी बढ़िया व्यवस्था करने पर जोर देनी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों ते समय पर सहायता उपलब्ध कराने और सड़क दुर्घटना का प्रति जागरूकता बढ़ाने खुणी आज जिला न्यायालय परिसर पौड़ी में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित करी गई। ये अवसर पर प्रतिभागियों ते सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों, प्राथमिक उपचार CPR आदि की जानकारी देनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नाजिश कलीमन बोली कि सड़क दुर्घटना का बाद यू पहलू घंटा गोल्डन आवर होंदु, ये दौरान घायल ते त्वरित चिकित्सा सहायता मिलन से भी की जीवन ते बचाने की संभावना कई गुना बढ़ी जांदीन। उन नागरिकों से दुर्घटना पीड़ितों की मदद कन और सड़क सुरक्षा नियमों को पालन कन की अपील करी। पिथौरागढ़ का जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली में 80 UK बटालियन NCC का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर को समापन हुए। ये मौका पर बटालियन का CO कर्नल देवेश एरिन बताए कि प्रशिक्षण का दौरान NCC कैडेट्स ने भारतीय सेना से जुड़ने की जानकारी, आपदा प्रबंधन और यातायात नियमों की जानकारी दगड़ विभिन्न प्रशिक्षण दिनी।
5: इस पूरे ट्रेनिंग में हमने कैडेट्स को सबसे पहले तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के लिए ARO की टीम आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने पूरा कैडेट्स को बताया कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या एंट्रीज हैं, क्या स्कीम्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर उसके बाद हमने ट्रैफिक पुलिस से भी रिक्वेस्ट करके उनको ट्रैफिक सेंस की जानकारी दी और उसके अलावा SDRF की टीम आई थी जिन्होंने यू आपदा मित्र स्कीम में उनको बच्चों को प्रशिक्षण दिया।
0: प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई NCC कैडेट रश्मि पांडे ने बताया यू प्रशिक्षण शिविर उनते काफी उपयोगी रही।
6: मैंने बहुत कुछ सीखा, सबसे पहले डिसिप्लिन सीखा, लीडरशिप क्वालिटी सीखी क्योंकि मैं एक लीडर भी हूँ, और हमने यूनिटी सीखी कैसे एक ग्रुप को एक उसको कमांड करते हैं, हर चीज सीखी मैंने यहाँ। और यहां

0: पे हमने ड्रोन क्लासेस भी ली, मैं एक ड्रोन क्लास की मेंबर रही, मैंने बहुत कुछ सीखा ड्रोन क्लास में कि ड्रोन कैसे हम उसको असेंबल करते हैं, कैसे डिसेंबल करते हैं, सब चीज हमने ड्रोन में सीखा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनिन भारत का सबसे लंबा समय तक सेवा करने वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने ये उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित करी। प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल का उपलक्ष्य में प्रदेश भर में जन कल्याण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करी जाला। प्रदेश ते दालचीनी उत्पादन का प्रमुख केंद्र का रूप में स्थापित करने का उद्देश्य से देहरादून में भूल बटिन द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करी जानी च। और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों ते समय पर सहायता उपलब्ध करोन और सड़क सुरक्षा का प्रति जागरूकता बढ़ोन खुनी पौड़ी में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर को आयोजन हुए। ये कदगढ़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को युवंक समाप्त हुए। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के ठीक 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुनने सभी श्रोतांक अपू दगड़े दिग्विजय नमस्कार। श्रोताओं हम देखना हाँ हमार खेत में रोज बदलाव होने लग रही और बखत बदलाव देगा हम लोगों के लिए अपू खेती कार्य में बदलाव करना पड़ल। हम जो परंपरागत भी बेना हाँ उनमें हमको बदलाव करना पड़ल। अगर हम जो हमारे वैज्ञानिक बात बतून लग रही उनर हिसाबल हम खेत करूँ तो वील हमको सकर फायद होल। और आप सोयाबीन की ले लो, सोयाबीन और भट आजकल हमारा कई जगह बुआई है गए और कई जगह अल बुआई होने लग गए हमने। सोयाबीन हमार खेती में एक लाभप्रद उत्पाद है सकूँ। सोयाबीन जहाँ खड़ में बहुत पौष्टिक हूँ यह उपयोग दूध लीजिए कर करी जाए। और अब सोयाबीनल जब दूध बढ़ दिल पनीर ले बढ़ाई जानो टोफू पनीर रहती कुनी यह बाजार में फल मांग छू। यह कर जी हम लोगों ने कोशिश करन पड़े जो हम सोयाबीन देना हाँ वो फल हो वो फल प्रजाति हो और जो हम वी पौध लगोना हाँ उनमें उपज ले हमको ज़्यादा मिलो। जब हमको उपज ज़्यादा मिले वी फल क्वालिटी हो कुना मतलब फल हमको पटल तो वील को जब हम लिखेर बाजार बिछूँ जूल तो वहाँ हाथों हाथ बिक जाल। हम देखने सोयाबीन फूलदार होने चाहें बिल्कुल सफ़ेद सोयाबीन होने चाहें तो वीक दाम ले भल मिलनी। जस मिल को कि यह दूध बनूँ और दूधल पनीर बनूँ या बहुत से उत्पाद आजकल बनने लग रही। तो हम लोग यह बात ध्यान धरना चाहें कि हम जो हमारे आस पास कृषि वैज्ञानिक केंद्र छ उनकी जानकारी लिभेर सोयाबीन बुआई करूँ। वहाँ बटी बिलेबेर हमारे काम पूर्णी है जान हम लोगों को लगातार उनकी संपर्क में रोन चाहें यह बुआई कैसे करण छू एक पौध बटी दूहर पौधक दूरी कदो हो चाहें और जो बात बतूनी उको अगर हम बराबर अमल करूँ उनर बताई बाट में अगर हम हिटुल तो जो हमार सोयाबीन छू वीक उत्पादन बहुत ज़्यादा होल। तो हमेशा हम लोगों को उन्नत प्रजाति सोयाबीन का उपयोग करण चाहें और वीक लीजिए जो हमार कृषि वैज्ञानिक छ जो सलाह देने लग रहे हैं उन सलाह हमको पालन करण चाहें। उन्हें सलाह लेने में अब कोई मुश्किल न हर घर घर में फोन है गई फोन में आप लोग उनकी सलाह ले सकता। जब गांव के प्रधान छन और लोग छन उनकी कृषि वैज्ञानिकों का नंबर आप लोग प्राप्त कर सकता। वे एक बार उनकी फोन कर फिर

अपु लोग अपु खेती कार्य में सोयाबीनक अपु पैदावार कसी करो कबतुई गुड़ाई हो। और जब उच्च फसल तैयार है जल तो कदू महन में तैयार हैं उनको मरण चुकना को टाइम हो। यह दो तीन बात ध्यान हमको धरण पड़ो अपु परंपरागत ज्ञान लगाया जो वैज्ञानिक सोच छू जब वीक हम समावेश करूँ तो वील हमार फसल जो हल वो फल हल। और हम देखना है आजकल यो गर्मी मौसम छू पिछड़ कई दिन मटी लगातार बारिश हो जाना है जो बारिश छू वील यहाँ मौसम ठंडा हो जाना भल हो जाना। लेकिन जो लोग तो तली भाबर में रोन लाग रही वो लोग वहाँ गर्मी परेशान है जानी तब है वो लोग हमार पहाड़ के स्वर्ग को नहीं। और ऐसा एक गीत हम अगले आपको सुनने आया कलाकार थी कुंती देवी जी।

श्रोताओ अल्ले आपूल गीत सुना कलाकार छी कुंती देवी जी। जस हम पहली बात करें कि हम लोगों का खेती कार्य में वैज्ञानिक सलाह लेनी चाहिए और जो आजकल सोयाबीन खेत है उनमें अगर हम वैज्ञानिक सलाह लियुल तो वील हम लोगों को फायदा हो। कई लोगों सोयाबीन भट्ट तो लगल हुनल कई जो गौचन वहाँ आई लगुणक प्रक्रिया चल रही हुनल तो हम लोगों को हमेशा परंपरागत ज्ञान दगे जो आधुनिक हमारे कृषि वैज्ञानिक छन उन सलाह का अनुपालन करना पड़ल तब हम लोगों को सकर फायदा हो। और हम लोगों का एक बात पर और ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को मिश्रित खेत करना चाहें। हम अगर मिश्रित खेत करूँ तो वील हमर उपज सकर होल। और अगर हम अपू खेत ना बात करूँ अपू गणना बात करूँ अगर हम उनमें हर साल अपू फसल में बदलाव करते रहूँ तो वील हमर वहाँ फसल सकर ही। कई गौनों में हम देख लूँ कि जो परंपरागत रूपल जो खेती कार्य करनी जैसे मधु लगुनी जो गार्डन में जो हंगन में जो खेतन में वीक दोहर साल वहाँ उन लोग झुंगर या मधिर लगुनी यस हमारे परंपरागत खेती में चली आ रहा। और आजकल हम देखना है तो सीजन हम देखना है मिश्रित खेतियाँ बहुत ही मधु जगह रहस ले बोई जाए कई लोग भटले लगुनी सोयाबीन लगुनी और जब मक्का खेती यानी जहाँ भग बोई जानी उदगल कुछ लगाई जानी। और हम सागा बात करूँ तो वहाँ हम देख लो कि जो क्यारी बढ़ाई जाए उमी जो भी मिनाव होमी उनमें कोई लोग मुँह लगोनी कोई लोग लहसुन लगोनी और बीच में धनी है गए पालक है गए लियाई है गए जो दुला हमारे हरी सब्जी में वीक उत्पादन करने लग रही। तो हम लोगों को मिश्रित खेती में ध्यान देना चाहें। और जिसमें पहले ला कहो आपू खेती कार्य कोई ला करो उम्मीद अपू जो परंपरागत जो ज्ञान छू वीक दगड़ दगड़ है हमको आधुनिक जो कृषि वैज्ञानिक जो सलाह देनी वीक ला हमको पालन करना पड़ा। क्योंकि जो कृषि वैज्ञानिक हम देखने लग रहा बखत लगातार बदलने लग रहा। हम हमेशा घर पर यह बात कहूँ हमारे सैण ले कोनी कि पहले टाइम के ची आज बखत के हो पहले यदि फल फसल हो ची यदि भल हमारे अनाज हो ची हंग पिना आजकल अब उदुक नहीं होने। तो बदलाव आपको देखना है पहली गर्मी कम हो ची अब देखना है हमारे पहाड़ मिला गर्मी सकर गए पहले बेटी हर साल यूँ पड़ ची अब हर साल यूँ नहीं पड़ने। तो लगातार जब प्रकृति में बदलाव होने लग रही तो हम लोगों को खेती कार्य में बदलाव करना चाहें। और पुराना ज्ञान लगे जो हमारे कृषि वैज्ञानिक छन उनर बातक ले हमको मानना चाहें। जब हम उनर बात मान भी रहो खेती कार्य करूँ तो वील हम लोगों को सकर फैद होल। बातचीत अखिल के जारी रोल पहले सुन लूँ जो नन नन रंगील गीत।

0: श्रोताओ अल्लाहपुर समूह स्वर्मी यो गीत सुनो। श्रोता हम टाइम टाइम पर आप लोगों ने लिखी जानकारी लेते रहनु ताकि आप लोगों का ज्ञान वर्धन हो। यह बीच हम लोग जरा छा अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक में वहाँ शाखा प्रबंधक अजय कुमार पोखरियाल लगे भेंट करी, उनती हम जानो कि किसान बीमा योजना कदू फैचू एक लाभ एक काश्तकार कसी ले सकूँ और वीक लीजिए आप लोगों को के कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी कसी आप लोगों ने जो खेती कार्य छ जो आप लोगों का फसल छो वीक बीमा है सको ये विषय में जानकारी अखिल आप लोग देकर साझा करने लग रहा है। आओ सुनो यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। श्रोताओं आज हमारे साथ हैं अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक अजय पोखरियाल जी। इनसे जानते हैं पिछले 12 सालों में सरकार की ओर से खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए तमाम काम किए गए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण काम है खेती के लिए बीमा। तो खेत के लिए जो फसल के लिए बीमा होता है उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे एक आम काश्तकार उससे लाभ ले सकता है, इसी विषय में तमाम बातचीतें होंगी। तो पोखरियाल जी सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो आम काश्तकार है अगर वो अपनी खेती का बीमा लेना चाहता है तो उसको क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा।
1: जी सर धन्यवाद आपका। इसमें जो है सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बीमा का होता है फसल बीमा का, इसमें हमारे यहाँ कॉपरेटिव बैंक में पर्टिकुलरली जो है हमारी दीनदयाल उपाध्याय किसान सहकारिता योजना चल रही है जिसके अंतर्गत हम जो है 1,00,000 रुपये तक का लोन जो है 0% ब्याज पर देते हैं और साथ में इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसको PMFBY भी कहते हैं उससे आच्छादित करते हैं। तो इसमें जनरली जो हमारा 1,00,000 का 0% का लोन है तो इसी लोन के साथ ही जो है हमारा जो है बीमा का भी एक अमाउंट होता है जो हम काश्तकार से ले लेते हैं और उसके बाद जो प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल है उस पर जो है जो भी हमारी फसल के लिए जिसके लिए हमने लोन दिया है KCC क्रेडिट कार्ड दिया है चाहे रबी की हो या खरीफ की हो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रीमियम निर्धारित होती है जो लगभग एवरेज जो है 5 रुपये जो है पर एकड़ के हिसाब से जो उसमें हम इंश्योरेंस करते हैं तो उस हिसाब से हमारा जो है इंश्योरेंस जो अमाउंट बनता है उसके लिस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको पोर्टल पे अपलोड करते हैं। पोर्टल पे अपलोड करने के बाद वो सारा जो है उनका डिटेल आता है कस्टमर का जो है अकाउंट उनका जो है खाता संख्या उनका खसरा संख्या उसके अकॉर्डिंग वो जितने लैंड निर्धारित होती है उसका प्रीमियम जो आता है वो जो है पोर्टल पे अपलोड हो जाता है। और इन केस जो है कभी कोई मौसम में कोई जो है मौसम के कारण कोई फसल ख़राब होती है तो फसल ख़राब होने के कारण जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से जो रिपोर्ट जाती है उसके अकॉर्डिंग फिर जो है क्लेम किया जाता है। तो जिस एरिया का या जिस ब्लॉक में फसल ख़राब हुई होगी तो उसका फिर ये क्लेम जो है इनको इनके खाते में डायरेक्ट जो है मिल जाता है।
0: एक सवाल आपसे और, आपने कहा कि जो मौसम की दुश्वारियों से अगर फसल ख़राब होती है तो उसका आप लोग क्लेम देते हैं, कई बार कुछ और आपदाएँ भी होती हैं आग लगना या हम जानवर अगर फसल को नुकसान पहुँचाएँ, क्या वो चीज़ें भी इसमें कवर्ड रहती हैं?
1: सर ये जो हमारा फसल बीमा योजना है ये दो टाइप की होती है, एक वेदर बेस्ड है और एक नॉन वेदर बेस्ड है। तो जनरली ये जो हमारा कवर करता है ये वेदर बेस्ड होता है क्योंकि जो फसलों का जनरली हमारे यहाँ देखा जाता है कि पानी और वर्षा न होने के कारण ही ज़्यादा नुकसान होता है। जहाँ तक बात है जो है जानवरों से खेती का तो उसका जो है फेंसिंग का अलग होता है जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जो है उसके लिए जो है योजनाएं चलाई जाती हैं तो उसकी फेंसिंग वाली योजना जो है दूसरे डिपार्टमेंट की है। हमारे यहाँ से जो KCC को जो है इंश्योरेंस किया जाता है वो सिर्फ वेदर बेस्ड और जो वेदर बेस्ड फसलें नहीं हैं उनके लिए जो है किया जाता है, उसमें फायर वाला जो है इंक्लूड नहीं है।
0: आदमी की काश्तकार के फसल को नुकसान हो गया तो काश्तकार आपको कब सूचित करेगा और जैसे आपने बताया कि प्रशासनिक टीम होती है वो फील्ड पे जाके चीज़ों का मौका मुआयना करती है तो इस प्रोसीजर में कितना

0: वक्त लगता है?
1: सर, ये डिसाइड करती है हमारी ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होती हैं, उनकी यूनिट्स होती हैं, ये उनका जो है काम होता है कि अगर कोई फसल जो है किसी वेदर के कारण नुकसान हुआ है तो इवेल्यूएशन करके वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से जो है राज्य सरकार को जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो उस हिसाब से उस एरिया को, जिस एरिया में ये ड्रॉट प्रोन कुछ ऐसा कुछ हुआ है, बारिश के कारण फसल खराब हुई है, तो उस एरिया को जो है लिस्ट आउट करके वहाँ जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी काश्तकार हैं, उनको जो है लिस्ट उनकी बना के, तो उनको फिर ये जो है जो इसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है की जाती है सरकार के द्वारा।
0: एक आम काश्तकार है, वो आपके यहाँ आके अपनी फसल का बीमा लेना चाहता है, तो वो कैसे आप लोग के पास आए, आप लोग की शाखा में आए, उसको क्या क्या जो कागजी कार्रवाई है उसको आपके पास लेके आने होंगे?
1: इसमें सर, जैसे मैंने बताया, जो हमारे केसीसी फार्मर्स होते हैं, इनका तो हम ऑटो अपने हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी को जो है कंपलसरी है बीमा कराना। तो काश्तकार का तो हम जो है फार्मर लोनी जो होते हैं, इनका अपने आप जो है इनकी लिस्ट निकाल के हम इसको जो है कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई अन्य भी कराना चाहता है काश्तकार, जो हमारे यहाँ का मेंबर नहीं है समितियों का, तो वो भी नॉन फार्मर करके, नॉन फार्मर लोनी करके एक कैटेगरी है, उसके अंतर्गत फॉर्म भर के वो हमारे यहाँ जमा कर सकता है। हम इसको जो नॉन फार्मर लोनी का पोर्टल में जो स्पेस है उसके लिए दिया गया है, उसको अपडेट करने का, अपलोड करने का, उसमें जाके इसको अपलोड कर लेते हैं। तो नॉन फार्मर जो लोनी है वो हमारे पास अलग से फॉर्म भर के शाखा में दे सकते हैं, हम उसको अपलोड कर देंगे।
0: फसल के लिए अगर आदमी को उसका बीमा कराना हो काश्तकार को, तो कब आपके पास आए, फसल की किस टाइम, हम कहेंगे बुआई से पहले आए कि जब फसल आपकी थोड़ी बड़ी होगी तब आए, तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है कि जब काश्तकार आपके पास आए?
1: सर, इसका पूरा जो है हमारे पास जो दिशा निर्देश जारी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, एक तो मई से जून के बीच में आते हैं और एक दूसरा जो है अक्टूबर के आसपास आता है। तो रबी खरीफ के दो हमारे यहाँ जनरली SLPC द्वारा डिसाइड जो फसलें होती हैं रबी और खरीफ की, उनके लिए जो भी हमारे पास गाइडलाइन आती हैं जब भी PMFBY करने का, क्योंकि उसका एक जो है प्रोसीजर है कि पोर्टल एक फिक्स टाइम के लिए खुलता है। तो जैसे हमारे पास जो है गाइडलाइन आती हैं कि आपको जो है रबी या खरीफ का जो है इंश्योरेंस पोर्टल पे अपलोड करना है, तो पोर्टल ओपन रहता है उस ड्यूरेशन में, हम 15-20 दिन के ड्यूरेशन में वो सारा काम जो है कंप्लीट करते हैं। तो इस हिसाब से जो है जैसे गाइडलाइन आती है उसी के अकॉर्डिंग पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल में ये सारे फार्मर्स की जितनी भी डिटेल्स अपलोड की जाती है,
0: डिटेल अपलोड की जाती हैं। तो पोर्टल में वो जानकारी सबमिट करते हैं, उसको कौन करता है, उसको बैंक करता है कि काश्तकार करता है?
1: इसमें सर, जो पोर्टल का होता है, सब बैंक शाखाओं को जो है यूजर आईडी और पासवर्ड अलॉट किए गए हैं बैंक द्वारा, सभी बैंकों में यही प्रोसीजर है। तो हम अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से अपने जो काश्तकार हैं, जो लोनी काश्तकार हैं, उनका अपलोड करते हैं, और अगर कोई बाहर से भी आता है नॉन लोनी तो उसको भी हम जो है एक्सेप्ट करते हैं, उनके फॉर्म लेते हैं और उसको अपलोड करते हैं। काश्तकार को करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बैंक शाखाओं में जिनके कस्टमर हैं वो खुद जो है अपलोड करते हैं बैंक, और नॉन फार्मर जो लोनी है उनका जो है फॉर्म लेंगे तो बैंक उसको खुद ही अपलोड करेगा। और इसके अलावा भी अगर कोई बैंक नहीं जाना चाहता है, उसके बगल में कोई CSC सेंटर या कुछ दूसरा माध्यम है, तो उस माध्यम से भी वो इसको अपलोड कर सकते हैं।
0: CSC सेंटर की बात की, तो CSC सेंटर में काश्तकार जाता है तो बैंक का चुनाव कैसे होता है, वो काश्तकार की मर्जी पर होता है कि CSC सेंटर वाले तय करते हैं कि काश्तकार को अमुक बैंक से अपनी फसल का बीमा लेना है?
1: उसमें ऐसा बैंक का नहीं है, जो नॉन फार्मर लोनी होते हैं, नॉन फार्मर लोनी का मतलब जिन्होंने वो फार्मर जिन्होंने लोन नहीं लिया है, उनके लिए पोर्टल पे एक अलग से जो है बनाया गया है प्रावधान की जो है नॉन फार्मर लोनी का डिटेल उसमें डालना है, उनका अकाउंट नंबर होना चाहिए उनके पास, और उस अकाउंट नंबर और जिस बैंक का वो पूरा डिटेल जो है उसमें फिलअप करना होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है उनको अपना या लैंड एरिया जो भी है खसरा खसोने के वो कागजात उनके पास होने चाहिए, तो CSC सेंटर में उसको जो है अपडेट करके उसको अपलोड किया जा सकता है। जनरली वैसे बैंक इसको करते हैं, बैंक के पास अगर कोई ना आना चाहे, कोई उसके पास फैसिलिटी है CSC सेंटर के पास में, तो वहाँ से करा सकते हैं।
0: धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी हमसे साझा की, हमारे काश्तकारों के लिए जानकारी बहुत काम आएगी और ये लोग जो सरकारी योजनाएँ हैं उनका लाभ उठाएंगे और खेती किसानी में होने वाले नुकसान को कम करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, यो अल्लाह आपको जानकारी सुनी कि आप लोग कैसे आपको खेती कार्य बीमा करा सकता और व्हील जो टाइम पर हमारा कई बार नुकसान है जाए वो नुकसान को कम कर सकता। आप लोगों तक जानकारी साझा करने लग रहा थी अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक का प्रबंधक अजय कुमार पोखरिया जी। और अब करनो आप लोगों का मनोरंजन, सुनो सुरेश प्रसाद जी यो गीत।

सुरेश प्रसाद जी गई यही लोकगीत देगा हमारा आजक ग्राम जगत कार्यक्रम लेकर सम्पन्न हो भूलू आप लोग देगा फिर भेंट हर रोजकाचार्य हर दुचार काम बाची दगड़ में गीत एल आज्ञा दियो नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 होने को ही अब आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगर मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनी भारत सबू जद बखत ताले सेवा करण वाल निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल यो उपलब्धि पर प्रस्तावित पारित करो। प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक कार्यकालक उपलक्ष्य में प्रदेश भर में जन कल्याण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करी जल। प्रदेश को दालचीनी उत्पादनक प्रमुख केंद्रक रूप में स्थापित करणक उद्देश्य देहरादून में भोलबटी द्वि दिनों की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करी जाने और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को बखत पर सहायता उपलब्ध करूण और सड़क सुरक्षा प्रति जागरूकता बढ़ू रख लीजिए पौड़ी में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजन करी गयो। अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत तक सबू जात बखत ताले सेवा करण वाल निर्वाचित प्रधानमंत्री बनगी। श्री मोदी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली छी। प्रधानमंत्री मोदी निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों हैगो। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबू जात बखत ताले निर्वाचित रूपल पद में बनी रूने बधाई दी। प्रधान मंत्रिमंडल की बैठक बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवल कौ की प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय निरंतर सेवा की यो ऐतिहासिक उपलब्धि पर बातचीत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखबिर उनर सफल नेतृत्व 12 वर्ष पूर्ण होने और ऐतिहासिक कार्यकाल में प्रदेश जनता और बटी बधाई दी राखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकास सुशासन राष्ट्रीय सुरक्षा सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक प्रतिष्ठा क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां पाई छन। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री विशेष स्नेह और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में अलग अलग आधारभूत संरचना परियोजनाओं और सीमांत जागों के विकास को नई गति मिली छू।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो देश की आजादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है और 12 वर्षों में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है। भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। मैं प्रधानमंत्री जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारे भूमि उत्तराखंड से उनको बहुत लगाव है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक कार्यकालक उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12/14 जून ताले उपलब्धि प्रदर्शनी जन कल्याण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करी जाल। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकारें प्रमुख उपलब्धियों विकास कार्यों जन कल्याणकारी योजनाओं और जरूरी फैसलों को भल ढंगल प्रदर्शित करी जाल। जेल आम लोगों को सरकारें विकास यात्रा और उपलब्धियों की पूरी जानकारी प्राप्त हो सको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकारें उपलब्धियों पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतीकरण तैयार करने आदेश

0: दी राखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशल विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना, जनकल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा क्षेत्र में नई बाट बनाई छन। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जनहित और विकासक संकल्प को झट अगिल के बनुणो। मतदाता सूची को पुरतरबटी शुद्ध, पारदर्शी और बिल्कुल ठीक बनोणा उद्देश्य प्रदेश में विशेष गहरी जांच करणक SIR अभियान चलाई जाणो। 7 जुलाई ताले चलन वाल यो अभियानक भीतर बूथ लेवल अधिकारी घर घर जयबिर गणना कागज पत्र बाटन और बटुलन करणी। जेल क्वेले पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होते रूणी निचैन। वह उत्तरकाशी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्याल जिले के सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों थे बूथ लेवल अधिकारियों पुर सहयोग करण के लिए कह रखो।
1: जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील है कि SIR का काम गतिमान है और हमारे जो 544 BLO हैं उनके माध्यम से घर

0: वह उत्तरकाशी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्याल जिला सभी नागरिकों सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों थे बूथ लेवल अधिकारियों पुर सहयोग करण लीजिए कह रखो।
1: जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील है कि SIR का काम गतिमान है और हमारे जो 544 BLO हैं उनके माध्यम से घर घर आकर आपको इन्यूमरेटर फॉर्म्स गणना प्रपत्र दिए जाएंगे जिससे भरकर आपने पुनः वापस BLO को उपलब्ध कराना है। चूंकि यह एक समय सीमा का काम है तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब BLO आपको संपर्क करें तो उनको जो भी आवश्यक सहयोग हो वो देने का मैं अनुरोध करता हूँ।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: देहरादून में भूलबटी दालचीनी में द्विदिनों अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करी जाने। इस संबंध में कृषि मंत्री गणेश जोशील आज देहरादून में भई पत्रकार वार्ता में बता कि यो आयोजन प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी उत्तराखंड महक क्रांति नीति उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक जरूरी पहल छो। यह एक उद्देश्य उत्तराखंड को दालचीनी उत्पादनक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करण छू। उन्होंने कहा कि यो कार्यशाला में दालचीनी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लियाल।
3: प्रदेश के अंदर दालचीनी के उत्पादन को कैसे बढ़ावा दें, उसकी कैसे हम मार्केटिंग करें, इसको लेकर एक सेमिनार जिसमें क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले इंडोनेशिया और श्रीलंका के वैज्ञानिक इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं देश के अंदर इस क्षेत्र में दालचीनी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं वैज्ञानिक यहाँ पर आ रहे हैं, इससे जुड़े हुए किसान यहाँ पर आ रहे हैं और हमने जो महक क्रांति 2026 बनाई है उसके तहत उस कार्यक्रम को।
0: ऊणवाल 15 जून को नैनीताल स्थित श्री कैची धामक स्थापना दिवसक मौके पर ऊणवाल वार्षिक म्यालक तैयारियों को लिबेर मुख्य सचिव आनंद वर्धनल आज सचिवालय में अधिकारियों दगड़ बैठक की। उन्होंने म्याल को सुव्यवस्थित रूपल आयोजित करणक लीजी पुलिस जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग दगड़े अन्य संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दी। मुख्य सचिव श्रद्धालुओं को ऊंड जान को देख बेर अगिल 10 दिनों के लिए रूट प्लान और यातायात प्रबंधन दगड़े जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना आदेश दी। दगड़े यह प्रचार प्रसार करहूं ले के रखो जैल श्रद्धालुओं को कैर प्रकार की समस्या नहीं हो। उन्होंने पार्किंग जागबटी मंदिर ताले ऊंड जानक लीजिए शटल सेवा के लिए भल व्यवस्था करण में जोर दे। मुख्य सचिव अचानक दशाक लीजिए निकासी योजना को ले जरूरी रूपल तैयार रखना आदेश दी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को बखत पर सहायता देने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जिला न्यायालय परिसर पौड़ी में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित करी गयो। यो मौके पर भाग लेने वालों को सड़क सुरक्षा यातायात नियमों प्राथमिक उपचार CPR आदि की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नजीश कलीमल को कि सड़क दुर्घटना के बाद पहली घंटा गोल्डन आवर हूँ, यो वक्त घायल को झट चिकित्सा सहायता मिलने पर वीक जीवन को बचोने की संभावना कई गुना बढ़ जाए। उन्होंने नागरिकों से दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करना और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रार्थना करी। पिथौरागढ़ जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली में 80 UK बटालियन NCC 10 दिनों वार्षिक प्रशिक्षण शिविर संपन्न समापन भो। यो मौके पर बटालियन KCO कर्नल देवेश एरिल बता कि प्रशिक्षण वक्त NCC कैडेट्स को भारतीय सेना से जुड़ने की जानकारी आपदा प्रबंधन और यातायात नियमों की जानकारी दगड़े अलग अलग प्रशिक्षण दी गई।
4: इस पूरे ट्रेनिंग में हमने कैडेट्स को सबसे पहले तो ज्वाइंट इंडियन आर्मी के लिए ARO की टीम आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने पूरा कैडेट्स को बताया कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या एंट्रीज हैं, क्या स्कीम्स हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर उसके बाद हमने ट्रैफिक पुलिस से भी रिक्वेस्ट करके उनको ट्रैफिक सेंस की जानकारी दी और उसके अलावा SDRF की टीम आई थी जिन्होंने युवाआपदा मित्र स्कीम में उनको बच्चों को प्रशिक्षण दिया।
0: प्रशिक्षण शिविर में शामिल भई NCC कैडेट रश्मि पांडेल बता कि यो प्रशिक्षण शिविर उन्होंने लीजिए बहुत उपयोगी रहो।
5: मैंने बहुत कुछ सीखा, सबसे पहले डिसिप्लिन सीखा, लीडरशिप क्वालिटी सीखी क्योंकि मैं एक लीडर भी हूँ और हमने यूनिटी सीखी कैसे एक ग्रुप को एक उसको कमांड करते हैं, हर चीज सीखी मैंने यहाँ। और यहाँ पे हमने ड्रोन क्लासेस भी ली, मैं ड्रोन क्लास की मेंबर रही, मैंने बहुत कुछ सीखा ड्रोन क्लास में कि ड्रोन कैसे हम उसको असेंबल करते हैं, कैसे डिसेंबल करते हैं, सब चीज हमने ड्रोन में सीखा।
0: अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनी भारत एक सबू जात बखत ताले सेवा

0: करण वाल निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल यो उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित करो। प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक कार्यकालक उपलक्ष्य में प्रदेश भर में जन कल्याण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करी जाल। प्रदेश को दालचीनी उत्पादनक प्रमुख केंद्रक रूप में स्थापित करणक उद्देश्य देहरादून में भूलबट्टी द्वि दिनों की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करी जाने और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को वक्त पर सहायता उपलब्ध करुण और सड़क सुरक्षा प्रति जागरूकता बढ़ूणक लीजी पौड़ी में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविरक आयोजन करी गयो। यह के दगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं। आगे सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सौंप रहे हैं फिल्म जब वी मेट से। गीत को आवाज दी है मीका सिंह ने, इरशाद कामिल का लिखा गीत है और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

बाले मर्जे पुधी तू का एक दिगार जाले चला तू कने मार दिने धन गोवाल ले जा रही और शुभी आगर भाबरों को बाट जाई जा लून बुढ़ों में भाबर वहीं ले जान लाग रही तू ये कह चौल धनी और नन्ना जी का न मानाई जा यो मैं चल हुन में को जो बन के भेज दे घर आ जुनो न ते दस दस भी आगरे रोन बाजू जी का बना नन्ना जो जी की चल जो

तेरे बाबू रह दो भनारी बार लाग गयो से तो भनार ना दो नोसुकिया कर जना लाग रो जाई जा चेत को टाग बार तेर बार जानेर सी तेरे बाबू रह दो सादी कोड में।

भगत पुरुष भट जा भगा धन्यर जी सत गोड बड़ी जू जी बाट जानेर जी ये तो भनाई ना दो बाट कहीं भूल गो।

बन्धिजिए पुसौ जो पालिङ हराउँछु चेतौ जो करु हर जय सुरज देवीर भगा मोई धुण लाग्रे तेरी बलाली जो जातरी गो फेरा पूर्वी साज भगा धन्य बुला लाग्रे नादा चोनी पोची हसी।

भनारी जय जात फरमे चैद गोड़।

दिल भनार गोडोग नाम लेजू तब तिर बला लोन भनारी भगा धोनियार जो से जा अलबला ने बेछन पटांगण में आ गया एक बणी की चल तू से भनारी एक बणी चाल बाज बाच तू सन ये घोड़ी का निवरा मचेरी भोज लाग सो ना।

बार में भाड़ मेर भनारी तब चैत गोड़ो चारी। आज हमार चैत गोड़ में को मन खारो छो भगा धनिया के बुला लाग रो छो चैत बन कहीं जा गुड़ो लाग रो तेर बला लिजो ना था बागुर है जोनू चु कहीं भगा धनिया बाट बता तेरी बागुर है जोन भोलिया भगत दियोरिया हले जब गई लौटिया चैत गोडा बाट कौन लाग रहे भगा धनिया मेरा।

भगा धनिया पोतियागर बड बतो लाग रे ब्यागर में पुज गो तब में भूलू धुपुआ मोर जो जी जा भिन लाग जो।

श्रोताओ, लोक गाथा क्रम में लोक गाथा भनारी नेत का पहला भाग अभी आपने सुना, कलाकार थे राम सिंह राणा और प्रमित जोशी। इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, रात के 8:30 होने को ही। अब अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। हैदराबाद 8 से 18 अक्टूबर तक तीरंदाजी प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र की मेजबानी करेगा। देहरादून में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी में सरबजीत सिंह, लक्षिता, अखिल चौरान और साक्षी सुनील पाडिकर ने अपनी अपनी स्पर्धाएं जीती। और ग्लोबल शतरंज महोत्सव आज से मुंबई में शुरू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज का दिन खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा। सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु की अगुवाई में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने आज ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रभावी प्रदर्शन किया, जबकि तन्वी शर्मा भी उलटफेर करने में सफल रही। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु, तन्वी, मालविका बंसोड़, ईशा रानी बरुआ और तान्या हेमंत सभी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने महिला सिंगल्स के पहले दौर में एक तरफा मुकाबले में पेरू की इनेस लूसिया कास्टिलो

0: सालाजार को सीधे गेम में सिर्फ 32 मिनट में 21-13, 21-11 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना अपने ही देश की ईशा रानी बरुआ से होगा, जिन्होंने 1 घंटा 3 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में चीन की हानकियान को 22-20, 10-21, 21-14 से शिकस्त दी। दिन का सबसे बड़ा उलटफेर 17 साल की तन्वी ने किया, जिन्होंने 5वीं वरीय और दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को 45 मिनट में 21-12, 22-20 से शिकस्त दी। तन्वी अगले दौर में मालविका से मुकाबला करेंगी, जिन्होंने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए थाईलैंड की तोरुंग सिहिंग को 15-21, 21-7, 21-13 से हराया। तानिया ने अमेरिका की एशिका जायसवाल को 39 मिनट में 21-17, 21-18 से हराया। तानिया का मुकाबला पूर्णपावी चोचुवोंग से होगा। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव रावत और मनीषा के ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी लिन जिडेन और विक्टोरिया जोनाडी को 27 मिनट में 21-13, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। हालांकि भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ियों के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। किरण जॉर्ज, थरुन मनिपल्ली और क्वालिफायर सनित दयानंद पहले ही दौर में हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात निशानेबाजी की। देहरादून में राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए T4 नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 4 फाइनल इवेंट आयोजित किए गए। सरबजोत सिंह, लक्षिता, अखिल चौरान और साक्षी सुनील पाडिकर ने अपनी अपनी स्पर्धाएं जीती। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के त्रिशूल शूटिंग रेंज में कल राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए T4 नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 4 फाइनल हुए, जिनमें पेरिस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सरबजोत सिंह, आर्मी शूटर लक्षिता, पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट अखिल श्योराण और महाराष्ट्र की साक्षी सुनील पाडेकर अपने अपने इवेंट्स में विजेता बने। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सरबजोत ने 245.9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। आर्मी के शूटर अजेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में 245.1 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वर्ल्ड चैंपियन सम्राट राणा 221.5 के स्कोर के साथ टॉप 3 में शामिल है। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में आर्मी शूटर लक्षिता ने हरियाणा की सुरभि राव को सिर्फ 0.2 पॉइंट के अंतर से हराया। लक्षिता ने 240 का स्कोर किया, जबकि सुरभि ने 239.8 का स्कोर हासिल किया। उत्तर प्रदेश की मानसी आनंद ने 220.2 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रही। ISSF म्यूनिक विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता सुरुचि और पलक ने क्वालिफाई करने के बावजूद फाइनल में हिस्सा नहीं लिया। पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के अखिल शराण ने नेवी के नीरज कुमार को सिर्फ 0.2

0: एसएफ म्यूनिक विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता सुरुचि और पलक ने क्वालिफाई करने के बावजूद फाइनल में हिस्सा नहीं लिया। पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन फाइनल में भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के अखिल शराण ने नेवी के नीरज कुमार को सिर्फ 0.2 पॉइंट से हराकर पहला स्थान हासिल किया। अखिल का स्कोर 358.3 रहा, जबकि नीरज 358.1 पर रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 345.4 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन फाइनल में महाराष्ट्र की साक्षी सुनील पडेकर ने 358.2 के स्कोर के साथ पहला, वहीं कर्नाटक की तिलोत्मा सेन ने 357.2 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश की आशी चौकसे ने 345.5 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात फुटबॉल की। 4 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन फीफा विश्व कप कल से शुरू होने जा रहा है। इस बार का टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक है।

0: पहली बार इस विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। सुनते हैं फीफा विश्व कप पर एक खास रिपोर्ट।
1: अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाला ये टूर्नामेंट न केवल फुटबॉल का उत्सव होगा बल्कि खेल के इतिहास के सबसे बड़े वैश्विक आयोजनों में से एक साबित होगा। दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसकों की निगाहें एक बार फिर उन सितारों पर होंगी जो अपने देशों को विश्व विजेता बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना अपने खिताब को डिफेंड करने के इरादे से उतरेगा, जबकि फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार हैं। सबकी निगाहें अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी पर होंगी, जिनके लिए ये विश्व कप अंतिम साबित हो सकता है। 2022 में कतर में विश्व कप जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा करने वाले मेसी एक बार फिर इतिहास रचने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में देखे जा रहे हैं। इंग्लैंड के जूड बेलिंगम, ब्राजील के विनीसियस जूनियर, स्पेन के युवा सनसनी लामिन यमाल और पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस भी इस विश्व कप के प्रमुख आकर्षण होंगे। अगर टीमों की बात करें तो अर्जेंटीना अनुभव और आत्मविश्वास के दम पर सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है। फ्रांस के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन है, जबकि ब्राजील हमेशा की तरह अपनी आक्रामक शैली और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के कारण खिताब की दौड़ में है। हालांकि विश्व कप केवल दिग्गज टीमों का मंच नहीं होता, हर बार कोई न कोई बड़ी टीम, कोई न कोई नई टीम उलटफेर कर इतिहास रचती है। इस बार मोरक्को, जापान, सेनेगल और उरुग्वे जैसी टीमें डार्क हॉर्स मानी जा रही हैं। मोरक्को ने 2022 विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा था और इस बार भी उसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले ही रोमांच से भरे होने वाले हैं। मेजबान देशों पर घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन का दबाव होगा, जबकि बड़ी टीमें शुरुआती चरण में ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहेंगी। इस विश्व कप की सबसे बड़ी विशेषता इसका नया प्रारूप है। 48 टीमों की भागीदारी से अधिक देशों को विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इससे प्रतियोगिता और अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही देशों और नए सितारों के उभरने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान श्याम थापा ने कहा कि फुटबॉल विश्व कप की लोकप्रियता पूरे विश्व में है।
2: फुटबॉल इज मोस्ट लविंग गेम सारा विश्व में। आप सारा दुनिया अभी देखने में मस्त हो जाएंगे, सब बिजी हो जाएंगे, क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है। और ये आपसे नहीं, बहुत दो वर्षों से ये जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, बहुत बड़े बड़े नाम हम लोग का टाइम आगे से फुटबॉल में लिया जाता था, लेकिन ऐसे नाम अभी हम लोग जो रोनाल्डो, मेसी, ऐसे ऐसे कलाकार फुटबॉल में, उनको कौन भूल सकता है। मेरे को लगता है फुटबॉल जैसा क्रेज सारा विश्व में और कोई दूसरा गेम में नहीं है।
1: अगले कई सप्ताह पूरी दुनिया फुटबॉल के रंग में रंगी होगी। कहीं मेसी की आखिरी विश्व कप की कहानी लिखी जाएगी, कहीं एम्बाप्पे जैसे युवा सितारे अपनी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं अनजान खिलाड़ी रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगे। विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि सपनों, जुनून, गौरव और इतिहास का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।

0: शतरंज की मुंबई में 360 ग्लोबल शतरंज महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हो गया है। ये प्रतियोगिता 18 जून तक खेली जाएगी, जिसमें देश विदेश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता एस किशोर की एक रिपोर्ट।
1: 58 लीडिंग चेस प्लेयर्स रिप्रेजेंटिंग 16 कंट्रीज, अमंग देम 14 ग्रैंड मास्टर्स, 34 इंटरनेशनल मास्टर्स, 6 फिडे मास्टर्स, 2 वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स एंड 2 कैंडिडेट मास्टर्स कंप्राइज द स्टार-स्टडेड फील्ड दैट विल फीचर इन द मास्टर्स सेक्शन कैटेगरी ए ऑफ द 361 मास्टर्स चेस टूर्नामेंट व्हिच गॉट अंडरवे एट द एक्सपो हॉल एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मुंबई टुडे। The Masters section is the flagship event of the Rs. 60 lakhs prize money 361 Global Chess Festival organized by the Indian Chess School and brings together some of the strongest players from India and around the world with an average rating of 2,359. Conducted in a classical format of 9-round Swiss League, the tournament provides an ideal platform for players to compete for rating points.
0: महिला विश्व कप की महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पिछले वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजर अब अपने पहले T20 विश्व कप खिताब पर होगी। भारतीय महिला क्रिकेट में जब भी बड़े मैचों और बड़े मौकों की बात होती है तो एक नाम लगातार चर्चा में रहता है, जेमिमा रॉड्रिक्स। एक दिवसीय विश्व कप की तरह ही भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को इस T20 विश्व कप में भी जेमिमा से उम्मीदें होंगी।
2: हाल के वर्षों में अपनी आक्रामक लेकिन संयमित बल्लेबाजी के लिए पहचानी जाने वाली जेमिमा रॉड्रिक्स ने दबाव भरे मुकाबलों में खुद को भारत की मध्यम क्रम की रीढ़ के रूप में स्थापित किया है। उनके करियर का सबसे यादगार अध्याय ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई ऐतिहासिक पारी रही। उस मैच में भारत ने 339 रन का लक्ष्य हासिल कर दुनिया को चौंका दिया था। जेमिमा ने नाबाद 127 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली और भारत की अब तक की सबसे बड़ी रन चेज की नींव रखी। इस पारी में उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त किया बल्कि दबाव में मानसिक मजबूती का भी शानदार उदाहरण पेश किया।
3: I was not doing well mentally, going through a lot of anxiety. Then being dropped was another challenge for me. But I think all I had to do was show up. But towards the end, I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained. But one scripture that says, just stand still and God will fight for you. And that's what I did. I just stood there and he fought for me.
2: इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मंचों पर उनका प्रदर्शन चर्चा में रहा है। 2022 महिला विश्व कप में भले ही भारत खिताब तक नहीं पहुंच पाया लेकिन उस दौर से जेमिमा के खेल में निरंतरता और परिपक्वता दिखने लगी थी। उसी दौर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उपयोगी पारियां खेलकर ये संकेत दे दिया था कि वह बड़े मैचों की खिलाड़ी बन सकती हैं। हाल के वर्षों में उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास में लगातार सुधार देखने को मिला है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उन्होंने कई बार मध्य क्रम में आकर पारी को संभाला और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बनाए। 2025 के विश्व कप अभियान में उनका योगदान सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने दबाव में टीम को स्थिरता देने का काम भी किया। अब जब भारत आगामी ICC महिला T20 विश्व कप की तैयारी कर रहा है, टीम की उम्मीदें एक बार फिर जेमिमा जैसे खिलाड़ियों पर टिकी है। हाल ही में उन्होंने भी माना है कि पिछले एक दिवसीय विश्व कप की जीत ने टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है और अब भारतीय टीम हर बड़े मुकाबले में जीत का दावा करने की मानसिकता के साथ उतर रही है।
3: I think what happened about winning that World Cup is everyone was a part of it. Everyone knows what pressure is like. But at the same time, everyone knows that, okay, we've crossed the line once, we can do it again. And that rubs off, that belief. You know, a lot of times we visualized it so much, but now we've lived it. So it helps us believe even more that we can do it again.
0: और अब बात तीरंदाजी की। हैदराबाद 8 से 18 अक्टूबर तक तीरंदाजी प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र की मेजबानी करेगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
4: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
4: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
4: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
2: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
4: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
2: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और NDA शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
6: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
2: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
8: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
7: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के

0: अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
4: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
4: Aaj desh ka har nagrik Vikasit Bharat ke sapne se bhara hua. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
3: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Moving the resolution.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर के जी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहाँ पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में

0: बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, तेजस, ब्रह्मोस और आईएनएस विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
1: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं

0: तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व करते पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूँ कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूँ।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है,

0: दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है। साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक आ, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है। उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफें एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है, आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते हैं, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, तो पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है, आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है, उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है। भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर सेक्शन की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई भी बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकाल कर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूँ कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो।

0: इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहाँ नया संसद भवन बना, जहाँ नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदल कर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूँ कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूँ और शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों के जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। पहली प्रस्तुति में जफर हुसैन खान वदायनी और साथियों के स्वरों में कव्वाली।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
3: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
5: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
6: श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के अगले सोपान में आइए सुनते हैं फरीदा खानम को।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं जफर खलीम का कलाम, स्वर है ए हरिहरन का।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, ताहिरा सैयद को अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से

रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत आपकी नज़र कर रहे हैं जहर फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज़ में। सईद कादरी का लिखा गीत है और धुन तैयार की है रूप कुमार राठौर ने।

श्रोताओं, तो आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक अभिजीत की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा गीत। धुन तैयार की है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है यस बॉस।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, और फिल्म का नाम था ये रात फिर ना आएगी। कार्यक्रम के अगले सोपान में आइए सुनते हैं आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज़ों में साहिर का लिखाई गीत। धुन तैयार की है रवि ने और फिल्म का नाम है वक्त।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आप सुनते हैं उमराव जान फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है तलत अजीज़ ने। सहर यार का लिखा है गीत है और धुन तैयार की है खयाम ने।

श्रोताओ, फिल्म संगीत कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के इस गीत के साथ हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और धुन तैयार की है शंकर।

कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आए।

0: आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है,
1: तुमसे अच्छा कौन है। फिल्म के इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक

0: उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
0: Bharat ke logon ne pehli baar